आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर हुरमूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन

अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

హే సద్రత్న తవైత దేవ కుశలం యద్వానరేణాదరాత్ అంతః

0: निसर्गाचा भाग आहोत. आपण निसर्गाचा छोटासा भाग आहोत.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात.

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार

0: राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
5: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देश

0: और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ 3रे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम 2रे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर 2रे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया 2रा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 107.1 की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो मस्त मुंबई कार्यक्रम की शुरुआत, और मैं हूं आरजी शैलेंद्र।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, केम छो, सस्रियकाल आणि मुंबई कसकाय झकास ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। गुड गुड गुड वाली मॉर्निंग, शनिवार की ये सुनहरी सुबह, कल के विसर्जन का उत्साह जो है वो आज भी कुछ जगह जारी है, क्योंकि अभी भी जो है वो कुछ पेंडाल का, गणपतियों का विसर्जन अभी भी बाकी है। विशेष तौर पर लालवा के राजा का विसर्जन भी मेरे ख्याल से लोगों ने जो है वो उत्साह और उमंग के साथ उसे अपने अंदर समा लिया होगा। इस उत्साह, विसर्जन के उत्साह और थकान जो है इसी बरकरार, इस उत्साह को बरकरार रखते हुए आज जो है वो शनिवार की ये सुनहरी सुबह है, और शनिवार की सुबह के साथ साथ कुछ लोगों को काम के लिए छुट्टी रहेगी या ऑलरेडी विसर्जन की वजह से कुछ लोगों ने छुट्टी ले ही ली होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो रोज की तरह लेकर आया हूँ आपका मॉर्निंग का एंटरटेनमेंट मस्त मुंबई, और मस्त मुंबई में शनिवार को रहता है दिल का फसाना। दिल का फसाना कार्यक्रम, फिलहाल स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 8:55। आप सुन रहे हैं 107.1 की फ्रिक्वेंसी और न्यूज ऑन एयर ऐप पर स्टेशन ऑफ ए नेशन FM रेनबो, और मैं हूं RJ शैलेंद्र। दिल का फसाना में कौन है हमारा आज का सितारा या फिर सदाबहार सितारा, जानेंगे इन खूबसूरत नगमों के बाद। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा FM रेनबो पर दिल से।

अनुपम अमोद की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म आक्रोश से, और उम्मीद करता हूँ ये गीत जो है आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। इरशाद कामिल साहब के लिखे बोल और प्रीतम दा का एक और बहुत ही बेहतरीन सा कंपोजिशन इस गीत का। 9:07 का समय हो चुका है दोस्तों, वेलकम बैक। एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई में कार्यक्रम दिल का फसाना, और मेरी आवाज़ आप जानते ही है, मैं हूँ आरजे शैलेंद्र। दिल का फसाना में जो है आज बात करते हैं, हमारे आज के सितारे हैं दिल का फसाना में एवरग्रीन सदाबहार देव आनंद साहब। सारी दुनिया जो है उन्हें देव आनंद के नाम से जानती है, लेकिन उनका असली नाम जो है वो धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। देव साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ। अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद देव साहब ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री जो है वो पूर्ण की। लाहौर ये ब्रिटिश भारत के दौरान जो लाहौर हुआ करता था, वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में जो है अपना ग्रेजुएशन किया, और कॉलेज ख़त्म होते ही कुछ साल बाद उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई। आज जानते हैं उनके उसी दिलचस्प सफ़र के बारे में, और हाँ 26 सितंबर यानी आज जो है उनका जन्मदिन भी है। उनका जन्मदिन है तो उनके कुछ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में शामिल करना तो जरूरी है। तो चलिए खूबसूरत नगमों के साथ एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम जारी रहेगा, और साथ ही साथ देव साहब के कुछ बेहतरीन नगमे भी आपके लिए लेकर आया हूँ दिल से दिल तक।

विरासत इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, जावेद अख्तर साहब के लिखे बोल और अनु मलिक साहब का ये एक खूबसूरत सा कंपोजिशन। दिल का फसाना में आज बातें जारी हैं सदाबहार देव आनंद साहब के बारे में। थोड़ी देर पहले ही आपसे जिक्र किया था कि जो बातें आज देव साहब के बारे में बताऊंगा वो डेफिनेटली सभी लोगों को इंस्पायर करने वाली है। उनका ऑरा और उनकी एनर्जी जो है वो अलग ही लेवल की थी। जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है या फिर जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो उनकी तारीफ किए बिना नहीं थकते। उनके बारे में बातें जारी रहेगी ही, लेकिन फिलहाल जो लिसनर हमारे साथ कुछ जुड़े हैं कार्यक्रम में उनका जिक्र भी ज़रूर करना चाहूँगा। पंकज मोहाड़ है अमरावती से, विजेंद्र घाटोल अकोला से कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे है, प्रकाश शिंदे है, फिरोज भाई है, फिरोज सिग्नापुरिया हमारे रेगुलर लिसनर, रेगुलर लिसनर में ही जो है वो दीपा पालकर, प्रमोद चिंसोलकर, दत्तात्रेय अड़ात वेलापुर से, ऐसे कई सारे हमारे रेगुलर लिसनर हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देव साहब की जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, ये दशक जो है वो 40 का दशक था और 40 के दशक में देव साहब मुंबई आ गए, लेकिन मुंबई आते ही फिल्मी दुनिया में काम मिलना या फिर काम करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंबई के चर्च गेट एरिया में, जी हाँ चर्च गेट एरिया जहां पर हमारा स्टूडियो है, वहीं से इस स्टूडियो के थोड़ी दूरी पर या फिर यहाँ से ज़्यादा दूरी पर जो है सैन्य सेंसर के कार्यालय में 65 रुपये के मासिक वेतन पर अपनी नौकरी शुरू की या फिर अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने 85 रुपये के वेतन पर एक लेखा फर्म में क्लर्क के रूप में भी जो है वो काम किया। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के प्रदर्शन को देखने के बाद देव साहब को एक कलाकार बनने की ख्वाहिश जागी और यही ख्वाहिश जो है उन्हें प्रभात स्टूडियो के बाबूराव पई के पास लेकर गई और यही मिला उन्हें अपना पहला ब्रेक और फिल्म का नाम था हम एक है। हम एक है उनकी पहली फिल्म 1946 में आई। इस फिल्म में उनकी मुख्य भूमिका थी और यहीं से शुरू होता है एक लेजेंडरी अभिनेता का सफर। आगे जानते हैं उनके कुछ लोकप्रिय और सफल फिल्मों के बारे में, लेकिन पहले मस्त वाला म्यूजिक। आज शैलेंद्र के साथ जल्द ही लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत गीतों के बाद। उनका जिक्र हुआ है देव साहब का, तो उनका ही एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए लेकर आया हूँ। और एक विशेष सूचना, 9:30 पर आप सुनेंगे एशियन स्पोर्ट्स अपडेट और ठीक 9:35 में मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा कार्यक्रम मस्त मुंबई में। सो स्टे ट्यून्ड एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण टिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे मैराथन की, जहां भारत ने इतिहास गढ़ दिया। 44 साल का जो इंतजार था वो समाप्त हो गया। भारत के सावन बरवाल ने मेंस मैराथन में 2 घंटा 11 मिनट 37 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह एक नेशनल रिकॉर्ड है। अब उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी है। जापान के इच्छिता यशमिता ने 2 घंटा 10 मिनट 49 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन की पेयू फेंग ने 2 घंटा 12 मिनट 13 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1982 के एशियन गेम्स में होसुर कुकप्पा सीताराम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मैराथन में भारत का यह पहला मेडल है, जिससे 44 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो गया।
2: एंड द गुड न्यूज हैज जस्ट केप्ट ऑन कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंस 200 मीटर डैश, वेयर अनिमेश खजूर विद अ टाइमिंग ऑफ 21.1 सेकंड हैज मेड इट टू द semi-final. Also, the decathlon event is going on, and of course all eyes there are on Tejaswin Shankar, who medaled up at the recently concluded Commonwealth Games. 3 events have been done: 100 meters, long jump and shot put have been done, and Tejaswin Shankar is number 3 on the list currently. He's number 3 in the standings. Also featuring in the same event is India's Taufeeq Noshad, who's currently at number 9.
1: एक और रजत पदक की बात कर लेते हैं दर्पण। शूटिंग में एशियन गेम 2026 में जो भारतीय महिला निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है उसकी बात करते हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है भारतीय जो महिला टीम ने। भारतीय टीम ने जो टीम थी उसमें तिलोत्तमा सेन, विदर्शी के विनोद और आशी चौक से शामिल थी। भारतीय तिगड़ी ने कुल 1763 अंक हासिल

0: जिसके चीन ने 1773 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता और गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया, जबकि कजाकिस्तान ने 1754 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह रही कि तिलोत्तमा सेन और विदर्शा के विनोद ने जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल स्पर्धा के फाइनल में भी जगह बना ली है। तिलोत्तमा क्वालिफिकेशन में तीसरे और विदर्शा छठे स्थान पर रही थी। इस तरह शूटिंग में भारत के पदकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ दोनों भारतीय निशानेबाजों की नजर अब व्यक्तिगत फाइनल पर भी होंगी।
1: Yes, the individual final is going to begin in a few moments from now. Alas, Ashish Choksi missing out on the qualification to the final was a bit of a heartbreak for Indian fans because she won the bronze medal in the same event in the last Asian Games. Anyhow, from there to another story of a bronze medal that India have just confirmed in squash, the mixed doubles pair of Joshna Chinnappa and Senthil Kumar had made it to the semi-finals. Unfortunately, they went down to their opponents from Hong Kong, and it has been a similar sequence of news coming from racket sports. Lakshya Sen in badminton men's singles in his round one contest went down to former world champion Lokiyan of Singapore, and in table tennis, Manush Shah and Yashaswini Ghorpade have lost their respective matches.
0: भाई फेंसिंग की बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। फेंसिंग में निराशाजनक नतीजे सामने आए। पुरुषों की सेबर टीम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के हाथों 25-45 से हार गई है, यानी हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला फाइनल टीम को जापान ने 45-14 से शिकस्त दी। इन दोनों हार के साथ फेंसिंग में इन टीम जो ई टीम इवेंट है, इस इवेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
1: बट देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द आर्चरी रेंज। इन रिकर्व मेंस, धीरज बोमादेवारा हैज सेट अ न्यू गेम्स रिकॉर्ड। ही स्कोर्ड 698 पॉइंट्स आउट ऑफ द पॉसिबल 722 इन द क्वालिफिकेशन और द रैंकिंग राउंड। ही फिनिश्ड नंबर 1 एंड नीरज फिनिश्ड 20th, यशदीप फिनिश्ड 25th, ओवरऑल द टीम फिनिश्ड 2nd। मीनवाइल इन compound women's, Chikita Tanipartha was on a roll. She scored 705 points and finished 1st. Jyoti Surekha Venom finished 12th and Pritika finished 20th. Overall, as a team, India were tied with China with 2099 points, and in the tiebreaker, unfortunately, they finished 2nd. However, the good news is that there are more medals to come. The Kabaddi Women's Final is currently going on, India versus Iran. It has been an explosive start. India are currently trailing by 5-6. It's going to be a match to watch out for. It's for the gold medal.
0: चलते चलते एक और खबर दे देते हैं। कैनो स्प्रिंट में भारत को कोई पदक नहीं मिल सका। मिक्स्ड कैनो डबल्स 500 मीटर फाइनल में राजू रावत एल नेहा देवी 2:0891 के समय के साथ 8वें स्थान पर रहे।
1: But plenty more coming, and we will be keeping you updated with every hourly update. We will meet you next at 10:30 PM. Stay tuned to Akashvani.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

अपनी यादों को तोड़ न जाना, अपनी यादों को छोड़ न जाना, जाना मैं हूँ तेरा दीवाना। बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, शान की आवाज में आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के लिखे बोल और विजू शाह का ये एक बहुत ही बेहतरीन सा कंपोजिशन। फिल्म है प्यार इश्क और मोहब्बत। प्यार इश्क और मोहब्बत का एक दूसरा और एक नाम है आपका और हमारा साथ, और साथ ही साथ जो है वो प्यार इश्क मोहब्बत का और एक नाम है, वो है देव साहब, जिन्हें लड़कियां जो है वो बेहद प्यार मोहब्बत और इश्क करती थी, और ऐसे कई किस्से हैं उनके जो है चाहने वालों के, उनकी लेडी फॉलो फैंस के। शायद आपने भी इस बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। खैर, मैं आज उनके करियर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आज उनका जन्मदिन है। 1948 में जो जिद्दी फिल्म आई वो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। 1948 के बाद क्राइम थ्रिलर बाजी, उन्हें इस फिल्म ने, बाजी ये दो फिल्में थी, जिद्दी और बाजी, इन दो फिल्मों ने उन्हें जो है वो अपार व्यापक पहचान दिलाई। और देव साहब ने 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक लगातार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें जाल है, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, और जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने, ऐसी कई फिल्में जो है वो उन्होंने व्यावसायिक रूप से एक अभिनेता के तौर पर, एक मुख्य

हीरो के तौर पर सफलता इन फिल्मों को दिलाई। 1960 के बाद 70 का दशक जैसे आया, 70 के दशक के बाद कुछ नए सितारों का जो है वो फिल्मी दुनिया में आगमन हुआ, लेकिन देव साहब का सितारा जो है वो अभी भी बुलंद था, अभी भी जो है वो उनके नाम से फिल्मों की खूब कमाई हो रही थी। कौन सी थी वो फिल्में और अभिनय के साथ साथ जो उन्होंने उनके व्यक्तित्व के और भी कुछ पहलू रहे हैं उनके बारे में भी बात करूंगा, कहीं मत जाइएगा। एफएम रेनबो पर मेरे साथ बने रहिए, आरजे शैलेंद्र दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार का राग सुनो रे। जी हाँ, प्यार का ये जो राग है वो एफएम रेनबो पर आकाशवाणी पे हमेशा चलते रहता है, बजते रहता है। और इसी प्यार के राग

में बंधे हैं आप और हम, और आप और हम प्यार के इस राग में अगर बंधे हुए हैं तो आपका जिक्र करना भी लाजमी है, बनता है। कार्यक्रम में हमारे साथ आकांक्षा सिन्हा है अहमदाबाद से, राजेंद्र खाजेकर दादर से जो है वो बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, सागर घागे परभणी से हमारे साथ कार्यक्रम में जो है वो कार्यक्रम का मज़ा और लुत्फ उठा रहे हैं, शुभदा मैडम है पूना से, और श्रीधर मोराजकर इन्होंने भी संदेश भेजा है कार्यक्रम के संदर्भ में। धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहने के लिए। देव साहब के जन्मदिन पर उनकी कुछ बातें आपके लिए लेकर आया हूँ। 70 के दशक के बाद जो है ऐसी कई फिल्में हैं जिनके जिनमें भी जो है वो देव साहब के नाम से अपार जो है सफलता मिली, जिसमें अमीर गरीब, वॉरंट, जाने मन, देश परदेश और लश्कर जैसी बहुत सफल फिल्में जो है, इन फिल्मों में अभिनय उनका बहुत सराहा गया। उनकी कुछ सबसे प्रशंसित जो प्रदर्शनों में मुनीम जी, फंटुश, बारिश, 9-2-11, 16 साल, ऐसी कई फिल्में हैं। मैं और भी कई नाम ले सकता हूं, जैसे जाली नोट, शराबी, 3 देवियां, नाम कम पड़ जाएगी, इतनी सारी जो है वो हिट फिल्में उनके नाम है। अभिनय के अलावा निर्देशन और निर्माता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने जो है वो पहली फिल्म जो निर्देशित की थी वो थी जासूसी ड्रामा प्रेम पुजारी, ये 1971 की बात है। 1971 में उनकी ये फिल्म प्रेम पुजारी बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन वो हार कहाँ मानने वाले थे। उनकी अगली फिल्म का निर्देशन और उनकी अगली फिल्म कौन सी थी और उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ जो है वो कमाई की और सफलता के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ दिए, कौन सी थी वो फिल्म और देव साहब के निर्देशन या फिर एज ए डायरेक्टर करियर को एक नया मोड़ मिला उस फिल्म से, उस फिल्म के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले उन पे फिल्माया गया एक खूबसूरत सा नगमा। 9:55 का समय हो चुका है, 10:00 आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, और समाचार के बाद मैं जुड़ूंगा फिर से आपसे नमस्ते भारत कार्यक्रम में। लेकिन देव साहब की बातें इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म हो सकती है, नमस्ते भारत में नए विषय के साथ देव साहब की बातें भी जो है वो जारी रहेगी। सो कहीं मत जाइए, बने रहिए FM रेनबो पर मेरे यानी आरजी शैलेंद्र के साथ, दिल से दिल तक। FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10:57 हो चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले। सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से उन्होंने बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। समाचार में आगे, मुंबई में आज सुबह 6 बजे तक कुल 34,403 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इनमें 6,000

235 सार्वजनिक मंडलों की और 27,615 घरेलू और 553 गौरी प्रतिमाएं शामिल है। विसर्जन के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। और समाचार के अंत में खेल समाचार। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। एफएम रेनबो पर अगला कार्यक्रम है नमस्ते भारत, और नमस्ते भारत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

वेलकम बैक। आगाज करते हैं नए कार्यक्रम नमस्ते भारत का, जहां हम आप तक कुछ विचार पहुंचाते हैं, आप तक विचार पहुंचाते हैं और आपके विचार भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है सुनो सुनो ए दुनिया वालों। वेल, इस कार्यक्रम का जो विषय है वो थोड़ा सा अभी गुलदस्ते में रखता हूँ, थोड़ी देर बाद जो है वो आपके सामने वो विषय आएगा ही, लेकिन देव साहब की जो बातें हैं उसे जो है वो कंप्लीट करना चाहूँगा, उसे ख़त्म करना चाहूँगा। हालांकि ये बातें अगर दिन भर भी चलती रही तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। बातों का सिलसिला जहां रुका था वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि अभिनय के अलावा देव साहब ने फिल्मों का निर्देशन भी जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। अपनी पहली फिल्म प्रेम पुजारी के फ्लॉप होने के बाद 1971 में बनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की उनकी दूसरी निर्देशन की फिल्म थी और इस फिल्म से देव साहब ने अपने निर्देशन का जो है वो सफलता का स्वाद चखा। और ये फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा उस समय में इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई थी कि आप भी शायद उस लहर का एक हिस्सा रहे होंगे। मतलब नेपाल और इन जगहों पे शूट हुई हुई ये फिल्म और वहाँ पे हिप्पी कल्चर, विदेश से आए हुए लोग और उन्हीं विदेशियों के संगत में अपने बहन को ढूंढना, बहन भाई के प्यार पर जो है बेस ये फिल्म लोगों को खूब भाई और इसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्म का निर्देशन भी किया जिसमें इश्क इश्क है, लूटमार है, स्वामी दादा, हम नौजवान, अव्वल नंबर, 100 करोड़, गैंगस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और यहां तक कि 2005 में जो उन्होंने 2011 में जो है उन्होंने चार्जशीट नाम की फिल्म निर्देशित की थी, वो उनकी अंतिम निर्देशित की हुई फिल्म थी। कला क्षेत्र में उनके इस अद्भुत योगदान के लिए उन्हें जो है वो पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज उनका जन्म दिवस है। ऐसे प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को आकाशवाणी परिवार की ओर से जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। मनोरंजन का सिलसिला एफएम रेनबो पर यूं ही चलता रहेगा, सो स्टे ट्यून एफएम रेनबो। एफएम रेनबो है म्यूजिकली योर्स और अगला गीत जो है वो देव साहब को ही डेडिकेट करना चाहूंगा, हम सभी की ओर से और मेरी तरफ से भी।

चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, इतना नाजुक सा रिश्ता। कुछ रिश्ते जो है वो बिल्कुल चूड़ियों

की तरह या फिर कांच की तरह होते हैं, बहुत ही नाजुक और बहुत ही मखमली, जिन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। उन रिश्तों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा आपके दिल के करीब होते हैं, और उसी तरीके से जो है वो दिल में स्थान जो है हमारे गुरुवर्य को भी दिया जाता है, या फिर हमें हम जिन्हें पूछते हैं उनका स्थान भी उतना ही नाजुक और संवेदनशील होता है। और यही मामला जो है वो जुड़ा है गणेश जी से, हमारे दिल की संवेदनाओं से कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़े हैं। और इस आज जो है वो सुनो सुनो दुनिया वालों में इस विषय को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी जो है हम गणेश विसर्जन के बाद की शांति महसूस कर रहे हैं, अभी भी कुछ जगह विसर्जन चल ही रहा होगा, और इस विसर्जन के बाद जो है वो एक चुनौती हमारे सामने आती है, और उस चुनौती से आप भी अवगत हैं। मैं उस चुनौती की बात कर रहा हूँ जो विसर्जन से उत्पादित, जो विसर्जन के बाद का जो दिन रहता है या बाद का जो समय रहता है, उस विसर्जन से उत्पादित वेस्ट और कचरे की जो चुनौती रहती है उसे बृहन मुंबई नगर निगम या फिर बीएमसी किस तरीके से जो है वो हैंडल करती है, या फिर किस तरीके से इन सारे कचरे का या निर्माल्य जिसे हम कहते हैं इसे वो किस तरीके से पूर्ण रूप से क्लीन करती है ताकि शहर और पर्यावरण की स्थिति वो जो है वो बराबर व्यवस्थित बनी रहे, उस बारे में आज सुनो सुनो दुनिया वालों में बात करते हैं। और तीन मुख्य चीज़ों पर या फिर तीन मुख्य स्टेज पर ये जो कचरे का निर्मूलन रहता है वो किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या मुख्य तीन स्टेप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बस आप कार्यक्रम में बने रहिए, 9:25 का समय हो चुका है और ठीक 10:30 आप 2026 एशियन गेम्स अपडेट सुनेंगे, और 10:35 पर फिर मैं आपसे जुड़ूंगा नमस्ते भारत कार्यक्रम में। सो कहीं मत जाइएगा, एफएम रेनबो पर एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट भी, सो स्टे ट्यून एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: टाइम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। भारत ने आज सुबह 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने खाते में जोड़ लिया, जिसमें एक रिकॉर्ड बना। 44 साल बाद भारत ने मैराथन में पदक जीता। जी हां, भारत के सावन बरवाल ने मेंस मैराथन 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में समाप्त करके सिल्वर मेडल जीत लिया। यह एक नेशनल रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने बनाया है।
2: एंड इन केस यू मिस्ड आउट ऑन आवर फर्स्ट अपडेट, जोशना चिनप्पा एंड सेंथिल कुमार इन स्क्वॉश मिक्स डबल्स हैव वन अ ब्रॉन्ज मेडल एंड द अदर सिल्वर मेडल हैज कम फ्रॉम द शूटिंग रेंज, वेयर इन द 50 मीटर 3 पोजिशन द ट्रायो ऑफ आशी चौकसी, तिलोत्तमा सेन एंड विदर्शा विनोद हैव वन द सिल्वर मेडल इन द Women's team event. The individual event also just came to an end.
1: जी बिल्कुल, महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजिशन यानी थ्री पी शूटिंग स्पर्धा में भारत को व्यक्तिगत पदक नहीं मिल सका। तिलोत्तमा सेन चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूक गई, जबकि विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही। तिलोत्तमा का 9.4 का शॉट उनके लिए भारी पड़ा और इसी वजह से वो पोडियम पर नहीं पहुंच सकी।
2: बट देयर इज द होप ऑफ अ गोल्ड मेडल व्हिच कुड बी कमिंग इन अबाउट 2 minutes from now, 2 minutes remaining on the clock in the women's kabaddi final, and India are up against Iran in that particular fixture, and India is currently leading by 35-30. Remember, they went into half time with India having a lead of 22-16. However, Iran came roaring back in the second half. However, 2 minutes, a lot of time in kabaddi, anything could happen, so we will keep our eyes on that.
1: जिस तरह से कबड्डी में उठा पटक जारी, जिस तरह से रोमांच बना हुआ, इसी तरह से बैडमिंटन में हमने एक रोमांचक मुकाबला देखा। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल के दूसरे दौर में मलेशिया की वोंग चिंग लिंग को 2-1 से हरा दिया। उन्नति ने पहला गेम 21-14 से जीता, दूसरे गेम में उन्हें कड़ी टक्कर मिली और वह 20-22 से हार गई। इसके बाद मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा। तीसरे गेम में उन्नति ने धैर्य बनाए रखा और 21-19 गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने महिला एकल के तीसरे दौर में जगह बना ली है। अब उन्नति हुड्डा आज दोपहर 1:30 पर तीसरे दौर में इंडोनेशिया की वरदानी पुत्री कुसुमा के खिलाफ उतरेंगी।
2: Yes, and eyes will also be on PV Sindhu, who will be in action later on. Meanwhile, Ayush Shetty has also won his match in the second round and has progressed further. Remember, the doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will be in action as well. Then, moving on to boxing.

0: A bit of a sad news coming from the boxing ring. Jadumani Singh, a lot of hopes were riding on him, but however, in the men's 55 kilogram category against an opponent from Philippines, he has gone down 3-0. Meanwhile, we are still waiting for the bouts of Kapil Pokhriyal and Priya.
1: जी हाँ, ई स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से भी कुछ अच्छी यानी बेहतर खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स में भारत का प्रदर्शन अब तक रहा उस पर बात करें तो भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ी परितोष को पुयो पुयो चैंपियन जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का उनको सामना करना पड़ा, उन्हें डेंगशिन कॉन्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से हराया। इस हार के साथ परितोष का टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल का जो सफर था वो यहीं थम गया है।
0: राइट, सो विद दैट इंडिया नाउ हैव 2 गोल्ड मेडल्स, 11 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, अ टोटल ऑफ 26 मेडल, एंड एज वी टोल्ड यू अनदर गोल्ड मेडल इज ऑन द होराइजन। द वुमेन्स कबड्डी टीम इज इन एक्शन विद 15 seconds to go on the match clock. India is leading by 37-33. Iran is hoping for a quick turnaround in the last few seconds, but hopefully India will come out up on top and win the gold medal. Remember, the men's team will be in action a little later against Iran as well in the gold medal match. And just as we say that, India have won in women's kabaddi. They have won the gold medal. The match has come to fruition. Congratulations to all Indian fans. The third gold medal in Asian Games 2026 has arrived.
1: बिल्कुल, बेहद शानदार प्रदर्शन किया भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। लेकिन चलते थे, एक और खबर देते हैं। आयुष शेट्टी यहां मुकाबला जीत गए बैडमिंटन में। जी हां बिल्कुल, कजाकिस्तानी जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे उन्हें 21-7 से हराकर जीत हासिल की है।
0: राइट, वी विल बी बैक विद मोर अपडेट्स। वी विल मीट यू अगेन एट 12:30 PM। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

हेलो, मैं कयामत तक हुआ तेरा डंकी, इस फिल्म का ये सॉन्ग है। अरिजीत सिंह की आवाज़, इरशाद कामिल के लिखे बोल और प्रीतम दा का ये एक और बहुत ही प्यारा सा कंपोजिशन। 10:49 का वक्त, आप सभी लोगों का साथ जो है वो कार्यक्रम को और भी खूबसूरत और खुशनुमा बनाता है। नए कुछ लिसनर्स, नए क्या, जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम में बने रहते हैं, कुछ लिसनर्स का एक बार फिर जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें डॉक्टर अंजू है अंधेरी ईस्ट से, राकेश माथुर पूना से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद कारखनिस, उसके बाद सुखविंदर और गुरुवंश सिंह, इन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की है, कल्पना राजू उल्हास नगर से, अजय साखरे इंदौर से, रियासत सिद्दीकी ने भी अपना संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशों और आपके प्यार का। बातें कर रहा था सुनो सुनो ए दुनिया वालों कार्यक्रम में, विसर्जन के बाद जो कचरे का प्रबंधन होता है या फिर जिसे साफ सफाई के दृष्टिकोण से फिर एक बार जिसे पर्यावरण और लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए बीएमसी जो है या बृहन्मुंबई नगर निगम किस तरीके से पहल करता है। सबसे पहले तो बीएमसी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हजारों कर्मचारियों को और सैकड़ों डेडिकेटेड गाड़ियों को नेचुरल और आर्टिफिशियल इमर्जन साइट पर तैनात करता है और विसर्जन के बाद व्यापक सफाई अभियान के तहत प्रमुख शहर की चौपाटियों से सैकड़ों मैट्रिक टन मिश्रित ठोस कचरा साफ किया जाता है, जिसमें गिरगांव चौपाटी है, जुहू बीच है, दादर चौपाटी और भी कई जो चौपाटियां शामिल है, जिसमें बृहन्मुंबई के साथ साथ अक्सर अलग अलग स्तर से एनजीओ और स्वयंसेवक भी सहायता करते हैं। हालांकि इसके और भी कुछ पहलू हैं, उन्हें भी जानते हैं, उन्हें भी उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं, लेकिन पहले कुछ प्यारे से नगमे आप सभी के लिए। गणेश जी के विसर्जन की बात की स्थिति की बातें कर रहा हूँ। चलिए, जाते गणेश जी जाने वाले हैं तो उन्हीं के उस याद में, उन्हीं के उस भावुक पलों में उन्हें ये गीत डेडिकेट करना चाहूँगा आप सभी की ओर से, एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

हेलो, वेलकम बैक। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 10:48 और सच कहूँ तो मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन जाते जाते सुनो सुनो दुनिया वालों में बातें जारी हैं विसर्जन के बाद के कचरे के निर्मूलन की, जिसमें निर्माल्य फूल और पूजा सामग्री का प्रबंधन भी जो है वो विशेष महत्व रखता है। जी हाँ, सैकड़ों मैट्रिक टन फूल और जो पूजा की सामग्री, फूलों के कचरे को प्रोसेस करके ऑर्गेनिक खाद या खाद में जो है वो बदला जाता है, ताकि सिविक गार्डन और हरी भरी जगहों को उसी तरीके से हरा भरा बनाया रखा जा सके। यहाँ तक कि प्रसाद से एनर्जी की पहल, ये भी एक इसका पहलू है, प्रसाद से एनर्जी की पहल। लालबाग के राजा जैसे बड़े पंडालों से ऑर्गेनिक प्रसाद और फूलों के वेस्ट को नई तरीके से सरकारी अस्पतालों के लिए क्लीन बिजली बनाने वाली यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है या फिर किया गया है। मूर्तियां जो तुरंत विसर्जन के 24 घंटे बाद या कुछ समय बाद नहीं डिसॉल्व हो पाती है, उनको लेकर भी जो है वो कुछ उपाय योजनाएं बनाई गई है। जेटी क्रेन पर या फिर लाइफगार्ड और खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके डूबी हुई या फिर थोड़ी डूबी हुई मूर्तियों को, खासकर नॉन बायोडिग्रेडेबल मूर्तियों को 24 घंटे के अंदर बाहर निकाला जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बची हुई मूर्तियों को लंबे समय तक साइंटिफिक डिस्पोजेबल और केमिकल बायोलॉजिकल तरीके से खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क और एक्सपर्ट कमेटी गाइडलाइंस के लिए हमेशा तैयार रहती है, इस विषय को जांचती और समझती है। तो ये कुछ पहलू है जहाँ बृहन मुंबई या फिर नगर पालिका जो है विसर्जन के बाद की इस समस्या को या चुनौती को अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट वे से हैंडल करती है या फिर कचरे का निर्माल्य का जो है वो निर्मूलन करती है। चलिए, विसर्जन के इस मौके पर कुछ जो है वो आपके लिए गीत लेकर आया हूँ और थोड़ी देर में आपसे अलविदा कहूँगा। एक बार फिर आपसे अलविदा कहने के लिए आऊँगा। बने रहिए FM रेनबो पर। FM रेनबो है म्यूजिकली योर्स।

उम्मीद करता हूँ आज का कार्यक्रम और आज के गीत जो है वो आपने एंजॉय किए होंगे। 10:54 का समय, मैं आरजे शैलेंद्र आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ और मैं जब भी जाता हूँ आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार मिले और वो बहुत बहुत खुश रहे। आप सभी लोग अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताएं जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता। सैटरडे है, वीकेंड है, साथ ही साथ विसर्जन का उत्साह और विसर्जन की थकान भी आप महसूस कर रहे होंगे। तो वीकेंड है तो वीकेंड को एंजॉय भी कीजिए और जिन्होंने विसर्जन में बहुत नाचा है, बहुत ज़्यादा उत्साह और बॉडी पेन हो रहा है तो रिलैक्स भी कीजिए, आराम भी कीजिए। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। Keep listening, keep loving FM Rainbow and love me too. Bye bye, take care of yourself. Love you all, dil se dil tak.

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस समय के समाचार। गृहमंत्री अमित शाह आज केरलम जाएंगे। श्री शाह आज दोपहर कुंद्रा में सहकारी क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण पहल का उद्घाटन करेंगे। वे अमृतापुरी में अमृता कीर्ति पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति माता अमृतानंदमयी मठ में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। वह बलरामपुरम में SUT अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। इसके अलावा मुंबई से सटे पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिलों में भी मौसम साफ रहेगा। खेल समाचारों में उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के नए दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, पहचान तो लिया ही होगा मेरी आवाज। जी हाँ, मैं हूँ आज आपके साथ अनीता, और कार्यक्रम आप ही का पसंदीदा ब्रेक फ्री। तो ब्रेक फ्री की शुरुआत क्यों ना करें ऊपर वाले को याद करके। जी हाँ, लेकिन जो गीत बजेगा उसमें किस ऊपर वाले की बात हो रही है ये तो खैर आपको समझना होगा। और इस गीत को चुनने के पीछे खास मकसद ये कि आज एक बहुत ही स्टाइलिश कलाकार या

नी अभिनेता का की जयंती है और उसी उपलक्ष में मैंने सोचा क्यों ना इस गीत से शुरुआत की जाए। बेहद खूबसूरत और जिस तरह से फिल्माया गया है वो भी बेहद उम्दा। तो चलिए और वक्त जाया न करते हुए ऊपर वाले को याद कर लेते हैं अपने अपने तरीके से।

जी हाँ, कार्यक्रम ब्रेक फ्री और मैं आपके साथ आज हूँ आरजे अनीता। और बातें, खैर बातें तो शुरू हुई ही नहीं है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेक फ्री के इस विषय की कि वर्ष का जो है 3/4 भाग तो अब बीत चुका है। ऐसे में हम क्यों ना उन वादों की बात कर ले जो साल की शुरुआत में हमने अपने आप से किया था। क्यों, आपने भी कुछ सोचा ही होगा ना। वैसे तो हर साल हम कुछ ना कुछ खुद से वादा कर लेते हैं, लेकिन कितना निभाते हैं ये तो खैर और बात है। और कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो टालते जाते हैं उनको अमल में लाने के लिए। कभी कभी दिल की बात कहने में एक उम्र भी लगा देते हैं, क्योंकि छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। क्यों, क्या ख्याल है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
2: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला।
1: इमारतीचे आराखडे अंतिम टप्प्यात असतानाच संग्रहालय आणि बागेचे मुख्य आरेखनकार विलियम ट्रेसी यांचं निधन झालं। त्यांचा अकाली मृत्यू संग्रहालय समितीसाठी धक्कादायक होता, पण दुःख करत बसायला वेळ नव्हता।
3: श्रोतेहो, भाऊदाजी लाड वस्तू संग्रहालयाची गोष्ट अवश्य ऐका, नंदिता पाटकर आणि मंदार परांजपे यांच्याकडून। लेखक आहेत नितीन साळुंखे। ही गोष्ट आपण ऐकू शकाल 22 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान रोज सकाळी 8:15 FM रेनबोवर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर दोन्ही वेळेला। जरूर ऐका अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम दररोज।

जी हाँ, कार्यक्रम ब्रेक फ्री और आप हैं मेरे साथ यानी अनीता के साथ। और आज बातें हो रही हैं उन वादों की, उन इरादों की। जी हाँ, वो रेजोल्यूशंस जिसे कहते हैं, वो संकल्प जो हमने साल की शुरुआत में शायद लिए हों। कईयों की आदत रहती है कि कुछ नया तय कर लेते हैं, हालांकि कितना निभा पाते हैं ये और बात है। और कई बार जिन आदतों से हम खुद को ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, क्या वो कर पाए? अगर हाँ तो किस हद तक, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। आप हमें ज़रूर लिख भेजिएगा कि आपका क्या अनुभव रहा है। बहरहाल सुनते हैं एक ऐसा दुर्लभ गीत दिलराज कौर की आवाज़ में, ओपी नैयर का संगीत। और जैसा कि हमारे नियमित श्रोता जानते हैं, 11:30 बजे होता है कार्यक्रम स्टम्प्ड, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होता है। उसके बाद 11:48 पर फिर सिलसिला शुरू होगा ब्रेक फ्री का। लेकिन मज़ा ले

मिलते रहिए हमारे गीतों का, जानकारी का और हमारे कार्यक्रमों का। तो ये है दिलराज कौर की आवाज़ और वो अंदाज ओपी नैयर का और वो गायन शैली वो तो खैर आप पहचान ही लेंगे। फिल्म का नाम हीरा मोती।

जी हाँ, कार्यक्रम ब्रेक फ्री अंतिम पड़ाव पर, घड़ी का इशारा कि बस कुछ 7-8 मिनट बचे हुए हैं। तो जो विषय हमने आज लिया था वो था कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम करते हैं, खासकर उन आदतों को, उन बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए, ब्रेक फ्री करने के लिए, उनमें हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं उस मुहिम में, तो बस यही बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि कई सारे जो हैं संकल्प कुछ इसी प्रकार से होंगे, जो अमूमन पूरा भी नहीं कर पाते होंगे। आलस को त्याग कर नियमित रूप से व्यायाम करने का संकल्प, या फिर पौष्टिक और संतुलित भोजन करने का संकल्प, व्यसनों से मुक्ति पाने का संकल्प, परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करने का संकल्प, अधिक बचत करने का संकल्प, अनुशासित जीवन जीने का संकल्प। क्यों, हम सब यही करते हैं ना, लेकिन कहाँ तक सफल हो पाते हैं ये खैर और बात है। और शायद वक्त इसीलिए इशारा कर रहा है कि हम आपसे पूछे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जी हाँ, इसी गाने के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 12 बजे होगा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, जिसमें मैं कुछ खास आपके लिए लेके आई हूँ। और आप ये भी जानते हैं कि आज देवानंद साहब की जयंती है, तो हिट एंड हॉट में अगर उनके कोई भी गीत आप सुनना चाहें तो बेशक लिख भेजें, हमें भी बहुत खुशी होगी उनके गीतों को बजाने में। बहरहाल छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ, तो गौर करिएगा आपके उन वादों और इरादों के बारे में, क्या कुछ आप और हम कर पाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण

लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। पानी की किल्लत का सामना कर रहे राज्य के 265 तहसील सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यह घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, कार्यक्रम म्यूजिक कैफे लेके मैं आई हूँ, मैं यानी अनीता आई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, कोशिश रहती है कुछ अलग करने की, कुछ कम सुने गीत सुनवाने की, कुछ जानकारी ऐसी देने की अपने श्रोताओं को। वैसे तो वो बहुत जानकार हैं और हमसे भी साझा करते रहते हैं, तो मान लीजिए सब कुछ एक तरह से सम्मिलित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश। और उसी के तहत आज मैं प्रस्तुत करूंगी कुछ ऐसे गीत जिनके गीतकार वैसे मशहूर तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद गीत उन्होंने लिखे नहीं। जी हाँ, तो अटकलें लगाएं कि कौन कौन से गीत बजेंगे। और ये भी गौर करने वाली बात है कि कई सारी महिलाओं ने इस क्षेत्र में योगदान नहीं दिया है। जहाँ संगीतकारों की बारी आती है, वहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं आपको नजर नहीं आती। और साथ ही गीतकारों में भी अगर आप उंगलियों पर ही गिनती कर सकते हैं कि कितने, कम से कम सुनहरे दौर की अगर बात की जाए तो बहुत कम ही गीतकार, महिला गीतकार आपको नजर आते हैं। बहरहाल शुरुआत होगी एक ऐसी ही महिला गीतकार के लिखे प्यारे से गीत के साथ।

गया कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनीता के साथ। और इस गीत से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिसकियां भरते हुए गाना कितना मुश्किल है। और ये गौर करने वाली बात है कि वो कहते भी हैं आप रुक क्यों गई, गाइए ना। तो बहरहाल आपने अटकलें तो लगाए होंगे, आपको जानकारी होगी कि इस गीत के गीतकार कौन थे। जी हाँ, इंदु जैन इस गीत की गीतकार थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया और जितना किया वो साई परांजपे की फिल्मों में गीतों लिख कर किया। और ये इनका एक बेहतरीन गीत है। वैसे वो हिंदी की प्रोफेसर थी दिल्ली विश्वविद्यालय में और कविताएँ भी लिखती थी और इसका बिल्कुल आभास हो जाता है उनकी भाषा इस गीत में कितनी निखर कर आई है ये जान के। बहरहाल एक और गीतकार की ओर चलते हैं। फिल्म का नाम अनुभव, म्यूजिक यानी कंपोजर हैं कान्हू रॉय। और चलिए बताइए आप, या फिर नहीं जानते तो गीत के बाद हम आपको बताए देते हैं।

जहाँ सिसकियाँ भरते हुए गाना मुश्किल है, वही हंसते हुए गाना भी उतना ही मुश्किल है। और दोनों रंग आपने देखे दो गीतों में। आप सोच रहे होंगे इसके गीतकार कौन थे। इसके गीतकार कपिल कुमार थे, और कपिल कुमार ने भी बहुत सारे गीत नहीं लिखे। एक अनुभव और दूसरी जो फिल्म है वो है आविष्कार, जिसमें कि उन्होंने हंसने की चाह ने वो गीत लिखा। और उसके बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है कि ये जो उन्होंने लिखे ये लव्स, ये अल्फाज, वो बेस्ट की टिकट के पीछे लिखे। जी हाँ, आप सोचिए, अगर कोई वाकई में कवि हो और उसमें प्रतिभा हो तो वह कागज़ का मोहताज नहीं होता। शायद यही कपिल कुमार जी ने साबित किया। और एक बेहतरीन कवि थे, और उनकी जो रचनाओं का एक संकलन है हल्दी लिपटे हाथ, तो अगर आपको मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। तो चलते हैं अगली गीत की ओर, और ये भी राजकमल जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ गीत है। और राजकमल जी ने कई नए कलाकारों को और गीतकारों को मौका दिया, और ये भी कुछ ऐसा ही गीत है।

जी आप फिल्म थी सावन को आने दो, आवाज़ें सुलक्षणा पंडित और येसुदास की, और इसे लिखा था माया गोविंद ने। जी हाँ, माया गोविंद भी एक फीमेल लिरिसिस्ट जिन्होंने वैसे अगर औरों की तादाद में ज़्यादा ही गीत लिखे, फिल्म आरोप से उन्होंने शुरुआत की थी, गीतकार का सफ़र उन्होंने वहीं से तय किया था, शुरू किया था। और अगर सावन को आने दो के आप क्रेडिट्स देखते हैं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उसमें 8 अलग गीतकार हैं। जी हाँ, तो राजकमल जी ने 8 अलग गीतकारों को मौका दिया, और हो सकता है इस फिल्म ने कोई इस तरह की कीर्तिमान स्थापित की होगी, क्योंकि अमूमन इतने ज़्यादा आपको लिरिसिस्ट एक फिल्म में नहीं मिलेंगे, 2 या 3, लेकिन 8 एक तरह से एक कीर्तिमान ही माना जाएगा। आपको ये बता दें कि 12:30 बजे होंगे अपडेट्स जो रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, जो एशियन गेम्स की अपडेट्स होंगी। तो 12:30 से 12:35 तक, यानी 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर से कार्यक्रम म्यूजिक कैफे आप सुन पाएंगे। और अब चलते हैं एक और गीतकार, तो खैर इन्हें कहना शायद सही ना होगा, कवि की ओर। जी हाँ, हिंदी फिल्मी गीतों में कई ऐसे गीत हैं जहाँ कविताओं को मानो गीत का आकार दे दिया गया, उसे फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से ढाल दिया गया, और उसी श्रृंखला में ये गीत है फिल्म आलाप का। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जिसे येसुदास जी गाते हैं, और पर्दे पर अमिताभ बच्चन हैं, और साथ ही जयदेव का खूबसूरत संगीत। आलाप के लगभग सभी गीत बेहद खूबसूरत राग मालिका तक आप इस फिल्म में पाते हैं। तो ये जो गीत है, कोई गाता मैं सो जाता, और आज जितने भी गीत बज रहे हैं उनके शब्दों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो लिरिकल क्वालिटी है बेहद खूबसूरत है।

जी हाँ, वाकई इस गीत को सुनकर शायद आपको भी नींद आने लगी हो, क्योंकि इतनी प्यार भरी आवाज़ में इस तरह की भावनाओं को उकेरा है। बहरहाल, ये गीत जो है, अगला जो बजा रही हूँ वो भी हरिवंश राय बच्चन का ही गीत है। छोड़े जाती हूँ आपको इसके साथ, और जैसे कि आप जानते हैं 12:30 बजे 5 मिनट के लिए होगा अपडेट जो दिया जाएगा एशियन गेम्स के बारे में, 2026 एशियन गेम्स के बारे में, और 12:35 मिनट पर फिर आपके साथ मैं जुड़ूंगी।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के साथ, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जी हां, फाइनल में ईरान को 37-34 से शिकस्त दे दी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत ने ईरान को जिस तरह से हराया, उठा पटक वाले मुकाबले में, जो मुकाबले के पहले हाफ की बात करें तो भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की, 22-16 से बढ़त के साथ ब्रेक पर गई। दूसरे हाफ में ईरान ने जोरदार वापसी की और भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। एक समय ईरान ने स्कोर को 27-26 तक पहुंचा दिया था। इस दौरान भारतीय टीम ऑल आउट भी गई। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने टाइम आउट के बाद अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया और मुकाबले को दोबारा अपनी पकड़ में बना लिया। खासकर आखिरी 5 मिनट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और ईरान को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया। भारत ने अंततः मुकाबला 37-34 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन गेम्स में चौथी बार है जो भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में 2018 को अगर छोड़ दें, जकार्ता पलमबाग में जब एशियन गेम्स हुए थे, वहां न भारतीय महिला टीम ने न पुरुषों ने किसी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। वहां पर भारतीय टीम को शिकस्त मिली थी फाइनल मुकाबले में। उसके बाद से कोई भी मौका नहीं जब भारतीय टीम फाइनल न जीती हो। वहीं आज पुरुषों का कबड्डी में फाइनल मुकाबला ईरान से ही होगा, जब भारतीय टीम स्वर्ण पदक के लिए जोर आजमाइश करेगी। इसके अलावा बात करें तो कई और बड़े मुकाबले आने बाकी हैं दर्पण।
2: एब्सोल्युटली, सो one gold done in kabaddi, the other one is awaited. However, it has been raining medals from all corners. First of all, the day started with a historic silver medal that was won by Savan Barwal in the men's marathon. Then we had another medal coming from the world of shooting, where in 50 meter three position rifle team event, the women's team event, the trio of Ashi Choksi, Vidarsa Vinod and Totally Masain won the silver medal. Then we had Joshna Chinappa and Senthil Kumar in mixed doubles in squash winning the bronze medal for India. And now a couple more medals have been confirmed in squash. Anahat Singh, just a few moments from now, had defeated her Japanese opponent in a semi-final where she was pushed to the brink. She lost the first two games and then averted 3 match points and came roaring back to win 3 games on a trot and enter the finale. She is now assured of at least a silver.
1: जी हाँ, स्क्वैश की बात कर लेते हैं। भारत के अभय सिंह ने एशियन गेम्स के जो पुरुषों के एकल स्क्वैश में फाइनल में जगह बना ली। जी हाँ, फाइनल सेमीफाइनल जो मुकाबला था वहां पर अभय ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को सीधे गेमों में 3-0 से हराया निर्णायक। तीसरे गेम में अभय ने 11-6 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अभय का गोल्ड मेडल मुकाबला तय हो गया है, यानी कम से कम सिल्वर मेडल भारत के पास आना तय है।
2: राइट, सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम स्क्वॉश टू, एटलीस्ट सिल्वर्स आर कंफर्म्ड। वी विल होप दैट बोथ ऑफ देम गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड मेडल्स। हाउएवर, करंटली पीवी सिंधु इज इन एक्शन। इन फ्रंट ऑफ हर इज चाइनीज ताइपेज चियुपिन चियान, हु इज रैंक्ड 17th इन द वर्ल्ड। रिमेंबर, सिंधु इज ranked 11th in the world. After a grueling first game, Sindhu was able to win it 21-19. The second game is currently going on and Sindhu is leading by 15-11. Ayush Shetty, who earlier won his second round match today, will be featuring in the third round against Chinese Taipei's Chao Tin Chen, who is, we all know, a big name. He has already 3 Asian Games medals to his name, so that will be a grueling fight.
1: वही बैडमिंटन में ही उन्नति हुड्डा महिला एकल के तीसरे दौर में और आयुष शेट्टी पुरुष एकल के तीसरे दौर में अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं।
2: Right, and then in the world of boxing, we have some good news coming. Kapil has won his bout, hasn't he, Shahid?
1: जी बिल्कुल, भारत के कपिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैम एस्ताकी को 5-0 से हराकर एशियन गेम्स की बॉक्सिंग स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। कपिल ने पूरे मुकाबले में दबाव बनाए रखा और आखिरी राउंड में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई मुकाबला जीतने के लिए। कपिल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा।
2: राइट, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी द रिकर्व वुमेन्स टीम हैव क्वालिफाइड एट द 7th पोजीशन इन द क्वालिफाइंग राउंड। ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट द रैंकिंग राउंड्स टू डिसाइड हाउ द फिक्स्चर्स वुड बी लेड आउट एंड द ट्रायो ऑफ कीर्ति अंकिता भाकर एंड कुमकुम मोहद हैव हैड अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस। सिमिलर रिजल्ट्स इन द कंपाउंड मेन्स टीम वेयर द टीम फिनिश्ड 3rd। हाउएवर our expectations are lofty from Sahil, Rajesh, Jadhav, Maniratnam, Ganesh and Kushal Dalal. Hopefully they will come roaring back when the actual competition starts.
1: जी बिल्कुल, मुकाबला इधर चल रहा है, सामने हमारे बिल्कुल खेल रही हैं पीवी सिंधु, हालांकि अभी आगे बनी हुई लग रहा है, यहां पर सिंधु जीत जाएंगे। हालांकि पहला गेम उन्होंने जीता है, दूसरे गेम में 18-11 से आगे चल रही है। अगले एक घंटे में क्या कुछ होगा, आज अब से ठीक एक घंटे बाद 1:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और दर्पण तिकिया को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में, जहाँ कुछ कम चर्चित गीतकारों की बात हो रही है या कुछ ऐसे कवि जिन्होंने कुछ एक गीत लिखे हैं या उनकी कविताओं को मानो ढाल दिया गया गीतों के स्वरूप में। तो चलिए सुने एक और प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम कादंबरी। जी हाँ, ये आप आशा जी की आवाज़ सुनिए इसमें, और जो लफ्ज़ हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, और जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो भी बेजोड़ है।

जी हाँ, ये थे अमृता प्रीतम, महान साहित्यकार अमृता प्रीतम की रचना, और उस्ताद विलायत खान ने संगीत तैयार किया था, और वो

0: वो झलक ही रहा है उस तरह की जो गुणवत्ता है इस गीत में, संगीत रचना, संगीत संरचना जो भी है बेजोड़ है। अब एक ऐसे शायर कहें, गीतकार कहें, कवि कहें, जिनकी एक कविता को ढाल दिया गया इस गीत में और उन्होंने थोड़े बहुत शब्द बदले इसके लिए, कवि नीरज की बात कर रही हूं और गीत है शोखियों में घोला जाए। तो पहले तो शायद उन्होंने जो उनकी अपनी मौलिक रचना थी उसमें चांदनी में घोला जाए लिखा था, लेकिन शब्द बदल दिए गए और शोखियों में घोला जाए बना दिया गया इसको फिल्म के लिए। तो लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत, जो वाकई में एक रचना थी, कविता थी नीरज साहब की।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, कवि गोपालदास नीरज, जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे लेकिन एक कविता को ढाल दिया उन्होंने गीत के रूप में। अगली जो प्रस्तुति होगी वो होगी एक ऐसे महान उर्दू शायर की, जिनकी एक नज्म लिखी हुई थी और उसे ढाल दिया गया एक गीत के रूप में फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से। खैर, समझने में शायद थोड़ी भूल हुई, क्योंकि ये जो नज्म थी वैसे वो गमगीन थी। जहाँ प्यार में जल जाने की बात कही गई है, तो वहाँ पर वाकई में दो प्रेमियों को जला दिया गया था और इसलिए दुखी होकर मखदूम साहब ने इस नज्म को लिखा था। लेकिन जो फिल्मांकन है वो एक रोमांटिक ड्यूएट के रूप में किया गया है, तो गौर करिएगा। अगर आप लफ्ज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि वाकई में मातम का जिक्र है इस गीत में। और अगर इस मूड को आपको समझना है तो लफ्ज़ों को आपको गौर से सुनना होगा, और मूड बिल्कुल अलग है जो चित्रण हुआ है और जो वाकई में इन्होंने लिखा था।

जी हाँ, ये ट्रेन आ चुकी है सवारियों को बिठाकर, और सवारी हैं प्यारे से गीत आप ही की पसंद के कार्यक्रम हिट एंड हॉट, और मैं हूँ आज आपके साथ अनीता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म सहरा का गीत, रामलाल जी का बेजोड़ संगीत। गगनदीप थांदी एवं उनके परिवार के सदस्य नवाशहर पंजाब से फरमाइश कर रहे हैं। तो लीजिए सुनते हैं इस गीत को, और हमेशा की तरह अगर गीत बहुत लंबे हों तो शायद एक ही अंतरा बज पाएगा, क्योंकि फरमाइश करने वाले कई सारे श्रोता होते हैं और कईयों की या जितनों की हो सके उतनी फरमाइशें पूरी करने की मेरी कवायद रहती है।

जी हाँ, रामलाल चौधरी जी का संगीत और जल तरंग का बड़ा ही सुंदर प्रयोग था इस गीत में। गीत वैसे बहुत ही शानदार। दूसरा जो गीत है जो बजने वाला है हिट एंड हॉट में, वो है राकेश माथुर जी की पसंद। ये हैं पुणे से और ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म शारदा का ये युगल गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की आवाज़ों में। और इस गीत को सी रामचंद्र जी ने जो है ढाला है राग हंसध्वनि में। और एक और बात जो है गौर करने की, दोनों गायिकाओं के जो का जो लहजा है वो अलग है, क्योंकि दोनों की जो मनस्थिति है पर्दे पर आप देखेंगी, दो नायिकाएं हैं बिल्कुल अलग है। एक में ठहराव है तो दूसरे में शोखी। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर और लीजिए सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत राकेश जी आपके लिए और हम सबके लिए।

जी, आज देवानंद साहब की जयंती है और उसी उपलक्ष्य में कई सारे गीत देवानंद साहब के अभिनीत उनकी फरमाइशें की जा रही हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सुबह से ही हम उनके गीत बजा रहे हैं। मुमकिन है आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो बज चुका है, फिर भी एक हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश की है, खासकर दीपा पालकर जी माहिम से और राजेंद्र परमार जी, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने दिल का भंवर करे पुकार। तो सुनिए देवानंद साहब द्वारा अभिनीत इस खूबसूरत से गीत को और रफी साहब की आवाज में।

जब फिल्म तेरे घर के सामने का ये रुमानी गीत मन नहीं चाहा काटने को, लेकिन साहब मजबूरी है क्योंकि कई सारे कतार में खड़े हैं। और आपने अगर इस गीत को देखा होगा पर्दे पर, तो इतनी खूबसूरती से इसका फिल्मांकन हुआ है। वैसे कुतुब मीनार में नहीं, उसी के मॉडल में इस गीत को फिल्माया गया है। और जिस ऊंचाई और जिस उतार की बात करते हैं वो बखूबी पर्दे पर भी नजर आता है। बहरहाल जो फरमाइश करने वाले हैं ये दूर देहरादून से मुकेश वालिया जी सुनना चाह रहे हैं फिल्म स्वामी का ये गीत। एक पारंपरिक गीत है जिसे एक अलग रंग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राजेश रोशन जी का संगीत, ये सुदास की आवाज।

आज इत्तेफाक से चंकी पांडे जी का जन्मदिन है और इसलिए बनता ही है एक गीत उनके नाम। तो यश शिंदे जी भेज रहे हैं उन्हीं की अभिनीत फिल्म का एक गीत, उसकी फरमाइश भेजी है उन्होंने। तो चलिए सुनते हैं चंकी पांडे जी को याद करते हुए और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जन्मदिन की इस गीत को।

लिए हमारी कई श्रोता भेज रहे हैं शुभकामनाएं, चंकी पांडे जी को, पंकज मोहड़ जी और कई सारे, विजेंद्र जी अकोला से। और विजेंद्र जी सुनना चाह रहे फिल्म आसपास का ये गीत, दरिया में फेंक दूं चाबी। जी हाँ, बड़ा नायाब नुस्खा है ये, तो चलिए देखिए क्या होता है जब दरिया में चाबी फेंक दी जाती है।

अपने श्रोताओं को बता दें कि 1:30 बजे यानी बस अब 2 ही मिनट बाद होंगे अपडेट्स 5 मिनट के लिए एशियन गेम्स के बारे में, और उसके बाद 1:35 बजे पर फिर से हिट एंड हॉट कार्यक्रम होगा। बहरहाल ये जो फरमाइश है ये जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो और उनका परिवार भेज रहा है। फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया और रात कली एक ख्वाब में आई। जी हाँ, आज शनिवार का दिन है, मुमकिन है कई लोग बहुत देर से उठे होंगे और कई मीठे सपने देखकर उठे होंगे। तो चलिए आपके सपनों के नाम ये गीत।

0: सोच तक।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: 20th Asian Games, about 500 strong contingent of Indian athletes is competing in about 36 sports, and therefore it is not easy to keep a tap of each and every performance, and therefore we appear in front of you on your radio sets after every 1 hour to give you the live updates. And here we are. First of all, if you missed our updates from earlier in the morning, let us tell you that the big breaking news is that the Indian women's team from the Kabaddi world has won a gold medal, giving India its third gold medal. There are a few more medals we have to talk about. I am Darpan Tikiya. Alongside me is Mohammad Shahid Azmi.
3: बिल्कुल दर्पण, बताना चाहूंगा शूटिंग में जो भारतीय महिला निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो टीम इवेंट का था वहां पर रजत पदक जीत लिया। वहीं पर बात करेंगे जो एक और पदक आया है, भारत के सावन बरवाल ने मेन्स मैराथन में 2 घंटा 11 मिनट 37 सेकंड का समय लेकर सिल्वर मेडल जीत लिया, जो एक रिकॉर्ड है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने मैराथन में एशियन गेम्स में मेडल जीता है।
2: एंड सम सिमिलर न्यूज कमिंग फ्रॉम द स्क्वॉश अरीना एज वेल, बिकॉज अर्लियर वी टोल्ड यू दैट जोशना चिन्नप्पा एंड सेंथिल कुमार हैड वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड टीम इवेंट। नाउ द न्यूज कमिंग इन इज दैट अनाहत सिंह एंड अभय सिंह बोथ इन देयर इंडिविजुअल इवेंट्स हैव कंफर्मड एटलीस्ट द सिल्वर, बोथ हैव एंटर्ड द ग्रैंड फिनाले। विल दे बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ गोल्ड मेडल? वी विल नो सून।
3: बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय स्टार ने चीनी जो ताइपे की खिलाड़ी है चू पिन चियान को सीधे गेमों में हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। सिंधु ने पहले गेम में 21-18 से कड़ा मुकाबला जीता, दूसरे गेम में 21-14 से शानदार जीत के साथ अगले मैच में जो अपना है वो जगह बना ली। सिंधु ने बेहतरीन नियंत्रण और आक्रामक खेल दिखाते हुए मुकाबले को 2-0 से जीत कर जो अगला मुकाबला होगा उसके लिए टिकट हासिल कर लिया है।
2: राइट, सो कंट्रोल एंड एग्रेशन बोथ गोइंग हैंड इन हैंड, एंड करंटली ऑल्सो ऑन द बैडमिंटन कोर्ट we are seeing that unfold as the pair of Gayatri Gopichand Pulela and Teresa Jolly are in action against a Japanese pair. So the home crowd is obviously behind the Japanese pair, but it is the Indians who are currently having their noses ahead. It's been a pulsating contest. The first game or the first set went down the wire, and eventually the Indian pair came out on top by 24-22, and the second set currently is at level at 4-4. So this could go anywhere.
3: बिल्कुल, गायत्री और तेसा ने जो भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले थे वहाँ भी अपनी जो छाप थी वो छोड़ी थी। खैर, बात करते एशियन गेम्स में घुड़सवारी की, जहाँ पर व्यक्तिगत ड्रेसेज स्पर्धा के दूसरे क्वालिफायर के बाद भारत के खिलाड़ियों ने अपनी स्थिति जो है बिल्कुल साफ नजर आ रही। हृदय विपुल छेदा और दोनों डी मैगियो की जोड़ी ने 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही थी। वहीं जयसूद और गुफी ला परले ने 133.559 अंक हासिल कर लिए और 13वें स्थान पर है, जबकि भारत की श्रुति वोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रहे थे।
2: राइट, कमिंग टू मेंस हॉकी, द इंडियन टीम इज इन एक्शन अगेंस्ट जापान ओवर हेयर एज वेल। दिस इज अ पूल ए मैच वेयर द इंडियन टीम हैज टेकन द फील्ड इन देयर सैफ्रॉन किट्स। जापान इज प्लेइंग इन देयर ब्लू किट्स, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट शीलादन लाकरा, अमित रोहिदास एंड विवेक सागर प्रसाद, दीज थ्री मैन हैव नॉट स्टार्टेड फॉर इंडिया। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग 11। करंटली द मैच इज इन टू इट्स फोर्थ मिनट and we are yet to see a goal being scored.
3: भारत और जापान के मुकाबले की बात करते तो दर्पण एक और मुकाबले की बात करें जो भारत और जापान के बीच में खेला गया था, पोकेमॉन यूनाइट में। ई स्पोर्ट्स का ये मुकाबला है पोकेमॉन यूनाइट, जिसमें भारत को जापान के खिलाफ अपने दूसरे और अंतिम ग्रुप स्टेज के मुकाबले में 2-0 यानी 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत को दक्षिण कोरिया से 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
2: Right. So the Indian contenders are now out of this particular category in esports, but there's plenty more coming. In about an hour's time, the men's Kabaddi final will begin, where India will lock horns with Iran. Will they be able to secure a gold medal? We will find out soon. Currently, Unnati Hooda is also in action on the badminton court, going against an Indonesian opponent. The match is currently into its first set. Unnati is leading by 8-5. Plenty more in store, and me, Darpan Tikia, and my colleague Mohammed Shahid Azmi will be coming again and again to give you the live updates. Stay tuned to Akashvani.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। आज मैं हूं आपके साथ अनीता, और आप ही के जो भेजे गए गीत हैं, जो फरमाइशें हैं, उसे सुनवा रही हूं। ये जो अगली फरमाइश आई है, ये भी दूर से आई है, पंजाब से, जालंधर से। संदीप कुमार जी सुनना चाह रहे हैं फिल्म बीवी हो तो ऐसी का ये गीत। तो लीजिए संदीप जी, आपके नाम ये गीत।

अगली जो पसंद है वो है अभिजीत गवहानकर जी की, जो कि हमें भेज रहे हैं संदेश महाराष्ट्र से ही, तो मैं उमरखेड़, जी हाँ उमरखेड़ महाराष्ट्र से, और ये सुनना चाह रहे हैं हवा हवाई। जी हाँ, मिस्टर इंडिया का ये मशहूर गीत हवा हवाई, जिसके कई सारे जो शुरुआती लफ्ज़ हैं वो तो समझ में नहीं आते, लेकिन हम लोग अब भी उसको गा ज़रूर लेते हैं बगैर समझे, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है।

अगली जो पेशकश होगी वो होगी यशवंत आड़मूटे जी की पसंद पर आधारित। ये धाराशिव वाशी से भेज रहे हैं हमें फरमाइश, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। जी हाँ, देवानंद साहब का ये बेजोड़ गीत। तो चलिए सुनिए यशवंत जी आपकी पसंद का ये गीत।

जी हाँ, देश के दक्षिण से लेके उत्तर और पूर्व से पश्चिम, सब तरह से, सब दिशाओं से, सभी दिशाओं से फरमाइशें आ रही हैं। अब आसाम के बागानों की ठंडी सी और मनमोहक हवा लेकर हितेंद्र दास जी आए हैं और ये सुनना चाहते हैं फिल्म गैंगस्टर का ये गीत, और उन्होंने डेडिकेट किया है पूरे आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोताओं को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हितेंद्र दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

कल्पना राजू जी उल्लासनगर से फरमाइश कर रही हैं इस प्यारे से गीत की, सो गया ये जहां सो गया आसमां। जी हां, इसमें चंकी पांडे भी तो हैं और उन पर फिल्माया गया एक बेहतरीन गीत। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और इसके बाद एक ही गीत शायद बच पाएगा और वो गीत होगा हम दोनों का अभी न जाओ छोड़कर। कई सारे श्रोताओं ने इसकी फरमाइश की है, चाहे वो पंकज मोहर जी हों या फिर फिरोज सिगनपुरिया जी और कई सारे श्रोता, और कुछ ने मेरे ऊपर छोड़ा है। लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं कल्पना राजू जी की पसंद का ये गीत और आखिरी गीत होगा फिल्म हम दोनों से।

या देखते ही देखते कार्यक्रम का सफर जो है अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ट्रेन बस अब अपने गंतव्य तक पहुंचने ही वाली है, तो मुझे यानी अनीता को इजाज़त दीजिए। आज के ये 3 घंटे उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए जो मैंने शोज प्रस्तुत किए, और कई सारे देवानंद साहब द्वारा अभिनीत फिल्मों के गीत, साथ ही चंकी पांडे जी की अभिनीत गीत भी हमने बजाए, और ये आखिरी गीत जो मैंने बचा के रखा था, कईयों की फरमाइश थी इस गीत को लेकर। फिरोज सिगनपुरिया जी, काजल कक्कड़ जी और कई सारे जो कहते हैं कि किसी भी गीत में हमारा नाम ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उनका गीत बज नहीं पाया। मुकेश कश्यप जी, मेहर अरोड़ा जी और आकांक्षा मनोज सिन्हा जी, इन सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद कहते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शायद उनका गीत न बच पाया हो, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और कई सारे जो हमारे श्रोता हैं देश और विदेश से जुड़ने वाले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस गीत के साथ छोड़े जाती हूँ जो कटेगा नहीं, पूरा बजेगा। और उसके बाद 2 बजे होंगे समाचार अंग्रेजी में, और उसके बाद हिंदी में क्रमशः हमारे दिल्ली केंद्र से। तो अगली बार कभी फिर ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अनीता को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए।

विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमरीका द्वारा उसकी शर्तें मानने

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गिरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में

0: 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केओंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के

0: गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
1: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: From Japan is that India are 12th on the medals table with 3 gold medals, 11 silver medals and 13 bronze medals, a total of 27 medals. Out of these, 4 have come today. Of course, we have been telling you how the women's team won the silver medal in the 50 meter 3 position rifle, that is shooting. Then we also told you how the mixed doubles pair of Joshna Chinnappa and Senthil Kumar won the bronze medal in squash, and we have also been telling you how India won a historic silver medal in the men's marathon and a historic gold medal in women's kabaddi. As we speak, the men's kabaddi team is beginning their gold medal match against Iran, and we are hoping for nothing less than another gold medal. Will the Indian men's team also be able to clinch the top position? We will know soon. I am Darpan Tikia, and joining me is Mohammed Shahid Azmi.
2: जी दर्पण, एक अभी भी नतीजा सामने आ रहा है। मुक्केबाजी में भारत की प्रिया ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। जी हाँ, मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम वर्ग में जो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था, भारत की प्रिया का सामना रिपब्लिक ऑफ कोरिया की यूएनजी ओ से हुआ था, जहां पर प्रिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर मुकाबला जीत लिया है और अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। दूसरी तरफ एक और मुकाबला चल रहा है, जहां भारतीय टीम ने अभी भी एक और गोल करके 2-0 की बढ़त बना ली है। जी हाँ, पुरुष हॉकी में भारत बनाम जापान मुकाबला जारी है, जहां भारत ने पहले हाफ में एक गोल किया था और बढ़त बनाई थी। गोल 15वें मिनट में अभिषेक ने किया था। जब अंतिम क्वार्टर शुरू हुआ, यहां पर भारत ने एक और गोल करके मुकाबले में 2-0 की बड़ी और महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है।
1: राइट, जापान आर कंसिडर्ड द रियल चैलेंजर्स टू इंडिया। हाउएवर, टॉकिंग अबाउट पल्सेटिंग एक्शन, देयर हैज बीन नथिंग मोर पल्सेटिंग देन द डबल्स बैडमिंटन मैच बिटवीन इंडियाज गायत्री गोपीचंद एंड ट्रीसा जॉली वर्सेस जापान्स फुकुशिमा एंड Matsumoto. It went down the wire. We had the first game which lasted over half an hour and it ended up 24-22 in the favor of the Indian pair, and then the second set was also enthralling. 21-18 the scoreline there, the Indian team winning. Before that, we told you that PV Sindhu won her match. She is now going to face Japan's Tomoko Miyazaki in the third round, and currently as we speak, Ayush Shetty in men's singles third round is in action against Chao Tin Chin of Chinese Taipei. He's leading the first set by 2-1.
2: एक और बैडमिंटन की खबर बता देते हैं, उन्नति हुड्डा का बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बैडमिंटन कोर्ट पर जिस तरह भारत की युवा स्टार उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो उन्नति ने वर्ल्ड नंबर 6 इंडोनेशिया की पुटी कुसुमा वरदानी को सीधे गेमों में हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन उन्नति ने दबाव के बीच बेहतरीन संयम दिखाते हुए 21-19 से गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अपनी लय को मजबूत किया, उन्नति ने आक्रमण खेल के साथ वरदानी पर लगातार दबाव बनाए रखा और 21-13 से दूसरे गेम को जीतकर मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उन्नति ने अगले दौर में अपनी जगह हासिल कर ली है।
1: We will hope that Unnati gets a lot more Unnati for India. By the way, did we tell you, in case you missed our earlier updates, let us remind you that 2 more medals are confirmed for India in squash. Earlier today in the women's singles semi-final, Anahat Singh staged a sensational comeback. She lost the first 2 games, then averted 3 match points to win against the Japanese opponent. Meanwhile, Abhay Singh in the men's singles defeated Pakistan's Mohammad Irfan to enter the final. So both of these players are in the final and are assured of a silver. And just as we speak, India have earned another penalty corner against Japan in the men's hockey match. Meanwhile, in the kabaddi arena, on the kabaddi mat, it is a seesaw battle. We are still into the starting few minutes and India and Iran are going toe to toe with each other. Currently, Iran leading by 3-2.
2: जी, और सुबह के मुकाबलों कुछ अपने श्रोताओं को जानकारी दे दे। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से उम्मीद थी कि पुरुषों के मुकाबले में कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन एकल मुकाबले में सिंगापुर के लो किन यू से 12-21, 21-15, 14-21 से हार गए। वहीं बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईरान के सैम एस्टास्की को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली। वहीं बॉक्सिंग में ही जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस के कार्लो बालम से हार गए हैं।
1: Right, we will be giving you all the updates as and when we have them. Keep tuning into Akashwani. We'll meet you again at 3:30 p.m.
0: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: Ci na goja.
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलते हैं इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं उस घमासान से जहां भारत बनाम ईरान मध्य मुकाबल है। कबड्डी का मुकाबला है, गोल्ड मेडल का मुकाबला, फाइनल मुकाबला। जिस तरह से महिलाओं ने ईरान को शिकस्त दी थी, ठीक उसी रास्ते पर पुरुष भी चल पड़े हैं और खेल खत्म होने में महज 1:41 का समय बचा है और भारत ने 37-30 की एक बड़ी लीड ले रखी है। लेकिन हाँ, मुकाबला बेहद जबरदस्त हो रहा है दर्पण।
2: Absolutely, it has been oscillating like a pendulum to and fro. Both the teams have been giving each other some really tough competition. Iran was leading by just one point, but importantly, they were leading at half time. However, India's defense has come roaring back. Sumit has been a silver lining in that Indian defense. He's been like a rock, and currently there is a review going on for one of the decisions that the officials made. The score line is 37-30, India leading by 7 points. Those 7 points matter a lot because only 1:41 remain on the match clock. So hopefully, like how the women's kabaddi team won the gold medal earlier this morning, we will have the news of the men's kabaddi team also winning the gold in a while from now. However, a lot more has been happening. Let's take you to the hockey stadium.
1: जी बिल्कुल, हॉकी से पहले ये भी एक दिलचस्प बात श्रोताओं को बताना चाहूंगा दर्पण की। ये कबड्डी के दोनों खिलाड़ी आपस में भी जब भारत में पीकेएल यानी प्रो कबड्डी लीग होता है तो एक दूसरे के साथ खेलते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की कमजोरियों और ताकत को पहचानते हैं। जी हाँ, अभी आपने कबड्डी की हॉकी की बात अब करते हैं। कबड्डी के बाद एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी के पूल मुकाबले में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। मुकाबले के 15वें मिनट में अभिषेक ने सर्कल के अंदर शानदार फील्ड गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त बना दिला दी थी। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दमदार गोल दागकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। भारत ने इस बढ़त को अंत तक कायम रखा और जापान को कोई भी गोल करने का मौका नहीं दिया। भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है। यानी जिस तरह से शुरुआत की थी, जिस तरह जीत के रथ पर भारतीय टीम सवार है, उसी तरह लगातार आगे बढ़ती जा रही दर्पण।
2: एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल बिकॉज रिमेंबर

0: You do not just want the gold medal because it suits your pride. You also want it because winning a gold medal here means a direct ticket to the LA 28 Olympics. That qualification is at stake. Meanwhile, in the world of badminton, there has been a lot happening. We have had some terrific matches, one of which is currently going on between India's Ayush Shetty and Chinese Taipei's Chao Tin Chen. And the Chinese Taipei shuttler won the first set. However, India Shetty came roaring back to win the second one. The third one is currently going on. Apart from that, let us also tell you that Unnati Hooda in the women's singles third round defeated her Indonesian opponent. PV Sindhu also has made it to the third round, and in a few moments from now, she will be locking horns with Japan's Tomoko Miyazaki. So a lot happening in badminton also today.
1: बिल्कुल उम्मीद करेंगे PV Sindhu वहां भी जीते, लेकिन बात मुक्केबाजी की करेंगे। मुक्केबाजी में भारत की प्रिया घंघास ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में दक्षिण कोरिया की योनजी ओ को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रिया का सामना ताजिकिस्तान की मिजगोवा समदोवा से होगा, जो एशियन गेम 2022 की कांस्य पदक विजेता है। यहां पर प्रिया घंघास को अपने लय को बरकरार रखना होगा, और अगर यहां जीतती है प्रिया घंघास तो पदक उनका पक्का हो जाएगा।
0: मीनवाइल the evening session in athletics has begun. It has been raining all day in Nagoya, and hence the Nagoya Athletics Park, the track over there, is drenched. We also told you earlier how the cricket matches were washed off today. India were obviously not playing today, but the men's cricket matches got washed off due to this rain, and the same rain has affected athletics as well. However, India's Tejaswin Shankar and Taufik Noshad are competing in decathlon. They competed in three events in the morning. Currently, the long jump event is going on, in which I will be happy to tell you that Taufik Noshad has cleared 1.85 meter, and a few more events in athletics are lined up.
1: ये बिल्कुल बाधा दौड़ में हम दो महिलाओं को, भारतीय महिला खिलाड़ियों को देखेंगे। ज्योति यारा जी 100 मीटर बाधा दौड़ में दौड़ती नजर आएंगी, वहीं नंदिनी कोंग भी 100 मीटर बाधा दौड़ में दौड़ लगाती हुई दिखेंगी। वहीं शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर जो हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे, उनको भी हम देखेंगे। वहीं महिला एथलीट में 200 मीटर में हरित भद्रा, जो अभी भी इंडिया ओपन का फाइनल जीत के गई, उन्हें भी 200 मीटर में दौड़ते हुए देखेंगे।
0: राइट, एंड वी विल बी बैक विद मोर अपडेट्स इन एन आवर्स टाइम। वी विल लीव यू विद द अपडेट दैट इंडियाज मेन कबड्डी टीम इज लीडिंग बाय 39-32, 48 सेकंड्स remaining on the match clock. We'll meet you again at 4:30 p.m.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है मेरे दोस्त दर्पण तिकिया। तो चलिए आज के इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी और बड़ी खबर के साथ। एशियन गेम्स में जो भारतीय कबड्डी की टीम है महिलाओं के बाद पुरुषों ने भी कमाल कर दिया और ईरान को ही रोमांचक मुकाबले में 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पुरुष कबड्डी का अपना नवा गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। ईरान ने कई मौकों पर कड़ी चुनौती पेश की लेकिन भारतीय टीम ने दबाव के बीच शानदार संयम बनाए रखा और मुकाबले को निर्णायक पलों में जिस तरह से मुकाबला पहुंचा था वहां पर संयम बनाते हुए 40-34 से जीत दर्ज कर ली। पुरुष कबड्डी टीम 1990 से एशियाई खेलों का हिस्सा है और भारत ने अब तक खेले गए सभी संस्करणों में पदक जीता है। इस स्पर्धा में भारत के अलावा केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने स्वर्ण पदक जीता है, दूसरा कोई देश नहीं जिसने स्वर्ण पदक जीता हो भारत के अलावा ईरान के अलावा। ईरान ने 2018 में खिताब अपने नाम किया था जब भारत उस स्पर्धा में यानी उस टूर्नामेंट के उस संस्करण में कांस्य पदक जीत सका था और उसी संस्करण में महिला टीम भी गोल्ड मेडल जीत नहीं पाई थी, उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा था।
2: बट टुडे बोथ द मेन एंड द वुमेन हैव वन द गोल्ड मेडल एंड एज वी स्पीक देयर इन जापान द मेडल प्रेजेंटिंग सेरेमनी इज गोइंग ऑन द इन द मेन्स कबड्डी एंड थाईलैंड एंड चाइनीज ताइपे हैव शेयर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल। मीनवाइल ऑफ course Iran had to settle for the silver and team India winning the gold medal. The bronze medal is currently being distributed as we speak and in a few moments from now the Indian tricolor will be lifted high, the Indian national anthem will be ringing around and it will be giving goosebumps to all our players. By the way, this is not the only medal that India have won today. As we told you, the women's kabaddi team also won a gold today. Apart from that, we had a silver coming in the women's team event in the 50 meter three position rifle event. Apart from that, we had a silver medal coming in the men's marathon. Apart from that, in the squash arena, we saw Joshna Chinnappa and Senthil Kumar confirm a bronze medal for themselves in the mixed double event. And apart from that, we also have two silver medals lined up, which will be won tomorrow. They could be converted into gold. Anahat Singh has made it to the final of the women's singles in squash and Abhay Singh has done the same in the men singles.
1: अगर बात करें हम यहां पर ट्रैक एंड फील्ड की तो भारत की नंदनी कोंग ने एथलेटिक्स की 100 मीटर बाधा दौड़ में राउंड एक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.48 सेकंड का समय निकाला और नंदनी अपनी हीट में चौथे स्थान पर रही थी। लेकिन नंदनी तक ही नहीं, अभी तमाम मुकाबले भारत के आने बाकी हैं। पारुल चौधरी आज एक्शन में नजर आएंगी।

0: उनसे उम्मीद है भारत की, क्योंकि पीछे भी उन्होंने एशियन गेम्स में कमाल किया है। इसके अलावा बात करें तो पुरुषों की 400 मीटर जो विशाल टीके वहां पर दिखाई देंगे, महिलाओं की 400 मीटर जो स्पर्धा है वहां पर प्राची और किरण दिखाई देंगी, जबकि पुरुषों के डेकेथलॉन में 400 मीटर हीट में तेजस्वी शंकर और तौफीक नौशाद नजर आने वाले हैं।
1: लेट अस टेल यू दैट द नगोया एथलेटिक्स स्टेडियम इज drenched in water. There is a lot of water on the track from the visuals that we have been able to see, and hence, you know, all the athletes will have to adjust a little bit, and therefore the challenge will be strong. But then if you have to win the medal for your country, it won't be easy. Talking about men's decathlon, the 400 meter will be the fifth event which will be played in the decathlon. Currently the fourth event is going on. It is the men's high jump, and the good news is that Tejaswin Shankar, yes, the same Tejaswin Shankar who recently medaled up at the Commonwealth Games, has cleared the 2 meter mark, and he would be gearing up again. Apart from that, let's go to the badminton court, where slightly disappointing news that Ayush Shetty has lost to Chinese Taipei's Chow Tin Chin in the men's singles third round match, but the women have been holding their heads high. Unnati Hooda has won her match in the round 3, and the pair of Gayatri Gopichand and Teresa Jolly have also advanced to round 3. In a few moments from now, PV Sindhu will be in action against Japan's Tomoko Miyazaki, and we will be coming back with the updates in about an hour's time.
0: पदक तालिका पे भी एक नजर डाल लेते हैं दर्पण। पदक तालिका में देखें तो अभी सबसे ऊपर चीन है, उसने 105 गोल्ड, 39 सिल्वर और 37 रजत या 37 कांस्य पदक सहित 171 पदक जीते हैं। जापान उसके ठीक नीचे 31 गोल्ड, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है, 37 उसके सिल्वर मेडल हैं जबकि 47 उसके कांस्य पदक के 125 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर कोरिया, तीसरे स्थान पर कुल 72 पदक हैं, जबकि भारत की बात करें 11वें पायदान पर 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत 28 पदक भारत के खाते में है। दोस्तों इस घंटे के अपडेट में इतना ही, अगले एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और दर्पण टिकिया को अनुमति दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, 5:34 हो गए और टकटक करती हुई घड़ी की इकाई इशारा कर रही है कि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। और वक्त को थामा हुआ था आपके साथ में माधुरी ने, और बहुत ही खूबसूरत आपने गाने सुने और बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन सुनी होगी आपने मराठी में। और अब वक्त आ चला है लव यू जिंदगी का, जो होने वाला है 5 से 8 के दरमियान। और इस खूबसूरत से शो के अंदर आप जिंदगी से किस तरह से प्यार करते हैं आपको पता ही है, लेकिन जिंदगी में वो कौन सी चीज़ें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करें, तो शायद आपको प्यार वाली डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन ये डायबिटीज़ ऐसी जिसकी ज़िंदगी के आपके दिल की नसें, आपके दिल की रूह और आप भी चलते हैं, वो कौन सी चीज़ें, इनके बारे में बात करूँ। लेकिन फ़िलहाल 90s का एक बड़ा ही सुपरहिट गाना आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। कल आपने गणेश विसर्जन जी के साथ में सुने थे ढोल और ताश, और भाई साहब एक अलग ही जोश था। और सड़कों पर जो हैं मैं

सकता हूं एक ऐसी रंगीनियत छाई हुई थी जिसका कोई कह सकता हूं मिसाल जितनी भी दे ले वो हर साल उतनी ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी ही खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन है, अगर कहीं दूर एम्बुलेंस खड़ी हुई है और रास्ता देख रही है कि किस तरह से वो सड़कों में से निकलकर उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए जहां पर एक मरीज की ज़िंदगी बच सकती है, और क्या ढोल ताशों में एम्बुलेंस की वो आवाज़ सुनाई देती है, बात करेंगे इसके बारे में भी बहुत जल्दी। फिलहाल सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को जो होने वाला है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में, नितिन मुकेश जी की आवाज़ में और मेरी आवाज़, आप जानते हैं आपका दोस्त केथांडा।

कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। सैटरडे भारी पड़े ना पड़े पर भाई, तो सैटरडे दे के दिन आराम से बिस्तर पे लौट के आराम करने का जो मजा है, आ हा हा हा हा। ये सैटरडे के दिन कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, अपने पूरे वीक डेज के जो दिन बचे होते हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से वीकेंड पर उन कामों को किया जाए। जैसे घर के अंदर छोटे मोटे काम है, अलमारी साफ कर ली जाए, बाहर जो बरामदा जो है काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा अच्छे से सफाई कर ली जाए, थोड़ा बहुत मरम्मत का काम था ये काम कर लिया जाए, यहाँ पैंट के अंदर जिप लगवानी थी या फिर टोपी जो थी फटी हुई थी उसे तुरपाई करवानी थी या फिर जो सूट था वो सिलवाना था या फिर ऐसा कोई काम जो हमारा वीक डेज पे नहीं हो पाता वो शनिवार के दिन होता है ना। और वेल ये जो दिन है कई लोग भाई साहब बाहर जाके भी बिताते हैं, यानी कि सैटरडे संडे की छुट्टी और भाई साहब उससे एक दिन पहले गणपति विसर्जन, तो लोग सोचते हैं कि काय बात हम ऐसा ना करें बाहर कहीं गुम्मी गुम्मी करने चले जाए, है कि नहीं है। वेल आप अगर गुम्मी गुम्मी करने गए हुए और मौसमों का एंजॉय कर रहे हो और सुन रहे हो इस शो को लाइव, तो बताना चाहूंगा कि आज 5 से 6 आप सुनेंगे लव यू जिंदगी और 6 से 7 के दरमियान आप सुनेंगे अंदाज़े बयां, और उस अंदाज़े बयां में आप सुनने वाले हैं खूबसूरत कविताएं और 7 से 8 के बीच होने वाली हैं बॉलीवुड की खूबसूरत फिल्मों की ट्रिवियाज, पर्दे के पीछे की कहानी। लेकिन फिलहाल इस घंटे का सबसे पहला ट्रैक तो नहीं कहूंगा, तीसरा ट्रैक कहूंगा, ओम शांति ओम से आ रहा है। ये भी 90s या यूं कहूं 80s के दरमियान का वो है गाना जिसने घर घर के अंदर हमारे लेजेंडरी ऋषि कपूर साहब को फेमस कर दिया था और उनकी जो प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए थे।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

एक दो तीन चार और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब एक गाना हर बार बजता रहा 1988 से लेके भाई साहब 2026 हो गए, लेकिन इस गाने ने नंबर जो कम नहीं बटोरे हैं। ये फिल्म तेजाब का गाना और भाई साहब ये फिल्म भी तेजाब की से बिखरी थी तो हर तरफ तहलका मच गया था। सुपर डुपर हिट, एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने बैक टू बैक चल रहे थे। और इन सारे सुपरहिट गानों के बीच में हर जगह कई सारे बातें चल रही थी, और वो सारी बातें क्या थी बहुत जल्द आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल वक्त है एक बहुत ही खूबसूरत से गीत का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

मैं के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, लेकिन हकीकत में आज की तारीख में अगर आप ऐसा करना बंद कर दो तो लोग कहते हैं भाई सब गोस्टिंग। जी हाँ, जेन ज़ी का नया वर्ल्ड है ये, जिसमें नए नए शब्द हैं। वेल, अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोप अप करना चाहते हैं लेकिन हाँ थोड़े से वर्ड्स जो होते हैं उनकी हेर फेर जो है उसे समझ में नहीं आती है, तो आज यही बात करने वाले हैं। फोमो, ये जो शब्द, इसका मतलब पता आपको? वैसे आपको पता हो तो हमें बता सकते हैं हमारे नंबर पर, जो नंबर आपके साथ मैंने कुछ देर पहले साझा किया था, या यूं कहूं कि साझा करने वाला हूं। 5:46 हो चुके हैं दोस्तों, बैक टू बैक आप सुन रहे हैं 90s के एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने, और इन गानों के साथ में आप सुन रहे हैं इन फिल्मों के थोड़े बार ऐसी बातें जो शायद आपको कभी पता चलती हैं, कई पता चलने के बावजूद आपको लगता है हाँ सुनी सुनी सी तो लगती हैं। फिलहाल इन बातों के बीच में एक बात अच्छी ये है कि भाई साहब अब आने वाला है सैलरी का वो दिन जिसे हम कहते हैं 1 तारीख, यानी ये महीना पूरा होने जा रहा है और अब बारिश जो है टटा बाय बाय करने वाली है, यानी कि जो छाता लेकर निकलने वाली मशक्कत थी और भाई साहब ऊपर रेनकोट डालने वाली मशक्कत थी अब दूर हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो लोग सेफ्टी वाले हैं यानी कि सोचते हैं भाई बारिश तो नहीं हो रही लेकिन रख लो क्या पता हो जाए, वो जो बोझ दबे हुए होते हैं एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज से, या फिर यूं कहूं कि जूतों से, जूतों के अलावा आपके रेन कोट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान सेफ्टी के पर्पज से रखता है जब बरसात के अंदर भीगने का डर उसके अंदर समाया हुआ होता है। फिलहाल अब बारिशें कहीं ना कहीं थोड़ी सी थमी हुई दिखाई दे रही हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि गणपति विसर्जन के दिन जो है बारिश तय है होनी है कि नहीं है, है ना, अमूमन ऐसा होता है, लेकिन इस बार कुछ जगहों पे शायद हुई होगी, पर जहां जहां पर मेरी नजर पड़ी, जहां जहां तक मैं जान पाया, वहां पर तो बारिश नहीं हुई। जहां तक मैं बात करूं मलाड की, मलाड वेस्ट में सुबह या शाम में अगर बात करूं टिप टाप टुप कहीं हुई हो तो बात अलग है, लेकिन अमूमन बारिश जैसे जोरदार या फिर रिमझिम रिमझिम रिमझिम जब होनी चाहिए थी, यानी कि शाम के वक्त पे जब मैं विसर्जन के दरमियान से गुजरा, रात का वक्त था तकरीबन 10 से 11 के बीच का, मलाड में तो ऐसा हुआ नहीं। क्या आप जहां पर थे वहां पर बारिश की बौछारें आपने देखी? अगर हां तो हमें बताइएगा 7 से 8 के दरमियान। फिलहाल सुनते हैं घंटे का एक और खूबसूरत सा गीत जो होने वाला है जश्न जाने मन, यानी कि जवानी जाने मन का, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत।

जवानी जानेमन हसीन दिलरुबा। और फिलहाल 5:00 ठीक भाई साहब 54 मिनट हो चुके हैं और हसीन दिलरुबा ये कहने वाली है आपसे कि भाई साहब 6 से 7 के दरमियान होने वाला है कार्यक्रम अंदाज़े बयां के अंदर खूबसूरत सी कविताएं जिनके अंदर आप मखमली कविताओं के साथ में खूबसूरत से गाने तो आप सुनेंगे। लेकिन आज तारीख है 26 यानी कि 4 दिन बचे हैं सैलरी के अंदर यानी कि जेब गर्म होने वाली है और गांधी जी दिखने वाले हैं नोटों के ऊपर। जब गांधी जी की तस्वीर दिखाई देती है उनके चेहरे पे तो मुस्कुराहट आती है लेकिन जब आपकी जेब में गांधी जी आते हैं तो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है बहुत ही अच्छा और पवित्र दिन है क्योंकि गांधी जी का बर्थडे है। लोग कहने वाले हैं कि गांधी जी से जुड़ा हुआ मैं कोई खूबसूरत सा गीत प्ले करने वाला हूं और ये गीत बहुत ही फेमस फिल्म से होने वाला है और इस फिल्म के अंदर गांधीगिरी की बहुत बात की गई है। भाई साहब इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो भाई साहब उस वक्त संजू बाबा और अरशद वारसी की जो केमिस्ट्री थी ओ हो सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। लेकिन फिल्म के अंदर पहले संजू बाबा का जो किरदार है या यूं कहूं कि संजू बाबा ने जो किरदार निभाया था वो कोई और निभाने वाला था। कौन था वो शख्स क्या पता है आपको? अगर पता है तो बस ठीक है 7 से 8 के दरमियान आपसे मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी कि अगर आप अपनी लाइफ में गांधीगिरी को अपनाते हैं तो वो कौन सी बात है जो गांधी जी से आपने सीखी है। मैं बात आपके नोटों पर छपे हुए गांधी जी की भी कर रहा हूँ और वो गांधी जी जिन्होंने आपको बचपन के अंदर शिक्षा दी है आपकी किताबों के अंदर। फिलहाल मैं अपने ज्ञान को थामता हूँ 5:55 हो चुके हैं इस घंटे का सबसे आखिरी ट्रैक लगा रहा हूँ और ये होने वाला बप्पी लहरी की आवाज़ में और भाई साहब थानेदार का गाना है 90s का वो गाना जिसने रेट्रो के अंदर तो दमादम मस्ती बिखेरी थी लेकिन जब ये गाना रीमेक होकर आया ओ हो जिस फिल्म के अंदर आया वो भी ओ हो ऐसे हो गई थी। फिलहाल कौन सी फिल्म थी पता है आपको? अगर आपको वो भी पता है तो ठीक है बस मिल रहे हैं फिर हम 7 से 8 के दरमियान बने रहिए 107.1 FM पर अपने दोस्त के साथ जिसका नाम है खेत हांडा और फिलहाल इस घंटे का आखिरी सबसे खूबसूरत सा ट्रैक

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात।

इस गली और में दोस्तों आपका स्वागत है। 6:15 और 30 सेकंड हो गए और टक टक करती हुई घड़ी की का इशारा कर रही है कि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और हम भी नहीं रुक रहे। आपको भाई साहब दूसरे शो में लेकर आ गए जिसका नाम है अंदाज़े बयां। और अंदाज़े बयां में आज आप सुनने वाले हैं खूबसूरत सी शायरी और साथ में होने वाली हैं खूबसूरत सी कविताएं। वो कहते हैं कि राह में मुश्किलें तो आएंगी ही, तुम बस कदमों की रफ्तार मत रोकना। गिरोगे एक बार, दो बार, 100 बार, पर उठकर दोबारा संभलना मत छोड़ना। ये रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज उगेगा जरूर। खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ना। और फिलहाल इसी के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत संगीत है मोहन करण की आवाज में लाल सिंह चड्ढा से कहानी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 6:23 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। और साथ में अब वक्त हो चला है अंदाज़े बयां में और खूबसूरत कविताओं का और कुछ खूबसूरत कोट का। वो कहते हैं कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने और थके हुए कंधों को हौसला देने आई है ये खूबसूरत सी पंक्तियाँ। ख्वाब टूटे हैं तो क्या, हौसले तो जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। समंदर की लहरें रोक नहीं सकती रास्ता मेरा, हम पंख से नहीं अपने इरादों से उड़ने वाले परिंदे हैं। अरिजीत सिंह का बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके समक्ष हाजिर है।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
2: तेरी शिकायत कर दूं

0: हो जैसे रे
1: चीना गोया। Welcome to the hourly updates from the 20th Asian Games, and the conversation has been surrounding athletics, the crown jewel of multi-sport competition. Over the last couple of updates, we told you that it has been raining down in Nagoya and hence the track is wet, it is slippery, it is drenched in water, and yet some of the athletes have done some terrific work to give India a lot of laurels, and none bigger than Tajinder Pal Singh Tur.
2: बिल्कुल, तजिंदर पाल सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया है और लगातार तीसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जीत लिया है। भारत की स्टार शॉट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन गेम्स में आज जिस तरह प्रदर्शन किया है, सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, अपने उस जो लय थी उसको लगातार बनाए रखा। तजिंदर पाल सिंह तूर का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, वो 20.64 मीटर का थ्रो रहा और पोडियम पर जगह पक्की की बनाई। मुकाबले में ईरान के मोहम्मद रेजा तैबिसी 20.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि सऊदी अरब के मोहम्मद टोलू ने 20.48 मीटर के प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भारत के एक और एथलीट करणवीर सिंह 18.40 मीटर के थ्रो के साथ 10वें स्थान पर है। खास बात यह है कि भारत ने पिछले दो एशियन गेम्स में पुरुष शॉटपुट का गोल्ड मेडल जीता था, इस बार तेजिंदर पाल सिंह तूर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत ने इस स्पर्धा में लगातार तीसरे एशियन गेम्स में, जैसा मैंने बताया, पदक जीता है। तूर ने इससे पहले 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 20.75 मीटर थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2022 के हांगझोउ एशियन गेम्स में तूर ने 20.36 मीटर की दूरी नापी और लगातार दूसरी बार गोल्डन बॉय बने थे। आपको यह भी बता दें, तूर जो कि 6.4 फीट लंबे हैं, 31 वर्षीय तेजेंद्र पाल तूर का जो बेस्ट थ्रो है 21.77 मीटर है, जो 2023 में बनाया था। हालांकि अगर उसके आसपास पहुंचते तूर तो यकीनन गोल्ड भी जीत लेते।
0: Right, and guess what? That is not the only good news that is coming from the athletic stadium there in Nagoya. Another medal has been confirmed by Prachi Chaudhary of India. Prachi has won the bronze medal in the women's 400 meter, where she ran her race in a time of 53.21 seconds. And Prachi Chaudhary, who comes from Western UP, she comes from Saharanpur, has found herself on the podium. Another P. Chaudhary, who comes from the same area, we are going to talk about Parul Chaudhary, who will be in action very soon. She won two gold medals in the previous Asian Games, and therefore we have our eyes on her. Her and Pooja will be competing in the women's 1500 meter final, which begins in about 10 minutes from now.
2: In dono khiladiyon ne jo Delhi mein jo abhi hal hi mein khatam hua India Open ka final, वहां पर विश्वास जताया भी था कि हम एशियन गेम्स में जीतेंगे, पोडियम फिनिश करेंगे, जिसमें से एक खिलाड़ी ने जीत लिया, दूसरी खिलाड़ी फाइनल में मध्य मुकाबिल होने वाली है। एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत का आज का दिन था बेहद शानदार था। भारत के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष डेकथलॉन में पहले दिन के बाद तेजस्विन शंकर शीर्ष स्थान पर है, जबकि तौफीक नौशाद 8वें स्थान पर रहे। और पुरुषों के 200 मीटर में, जैसा हमने बताया था, अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिलाओं की 200 मीटर में हरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड ने भी फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।
0: एंड टू ऑफ आवर स्प्रिंटर्स हैव मेड इट टू द फाइनल ऑफ द मेंस 1500 मीटर, गुलवीर सिंह हु वन अ सिल्वर मेडल यस्टरडे एंड यूनिस शाह। सो कीप योर आईज ऑन दीस टू एज वेल, एंड देयर इज plenty more to come. It has been a good day for India at the Asian Games. In case you missed our hourly updates, which have been coming to you after every hour right since the morning, let us just give you a quick rundown of the medals we have won today. The first one was obviously in the men's marathon, a silver medal coming India's way. Then in squash, Joshna Chinnappa and Senthil Kumar won the bronze medal in the mixed doubles event. After that, we saw the men's kabaddi team as well as the women's kabaddi team win gold medals, and we also now have seen medals coming from athletics. So a lot is happening and a lot will keep on happening, and we will keep you updated. We will be back with our next update at 7:30 PM sharp. I'm Darpan Tikia with my friend Mohammad Shahid Azmi. Keep listening to Akashwani.
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
4: अभी आप

वेलकम बैक दोस्तों। आपने सुना बड़ा ही खूबसूरत सा गीत, जो अमूमन मैं भी अपने शो में कुछ ऐसे गीत्स को आज इंक्लूड कर रहा हूँ जिन्हें मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। फिलहाल तो है ये 2022 के गाने, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, मिस कर देते हो, बाद में सुन लेते हो, और अगर आपको ये कोई कहे या सजेस्ट करे कि यार ये मेरा फेवरेट था, या यार ये गाना भी सुन ले भी अच्छा है, तो उस वक्त शायद आप उसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेते हो। अगर आपको कभी भी वक्त मिलता है तो उन गानों को आप सुन लेते हो। तो कुछ ऐसे ही गाने मैंने आज निकाले हैं जो सोचा आपके साथ में मैं शेयर कर सकूं। फिलहाल इन गानों के साथ साथ खूबसूरत कविताएं तो आपके समक्ष मैं हाजिर कर ही रहा हूं, और साथ साथ में आप अपडेट्स भी सुन रहे हैं। अगली जो खूबसूरत से कविता है वो कहती है जिंदगी के सबसे बड़े फलसफे के बारे में, कि ना शिकवा कोई ना गिला कोई, ना शिकवा कोई ना गिला कोई, जब भी मिलो मुस्कुरा कर मिला करो, मिट्टी के पुतले हैं एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बस दिलों में नफरत नहीं थोड़ा सा प्यार बचा कर रखो।

वेलकम बैक दोस्तों। 6:48 ठीक 48 मिनट हो चुके हैं और मेरे पास जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि कौन सा गाना वो सुनना चाहते हैं 7 से 8 के दरमियान। तो बताना चाहूँगा कि 7 से 8 के दरमियान जो हम तुम नाम का ये शो है, आज उसमें होने वाले हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा के खूबसूरत से ट्रिवियाज, यानी कि वो फिल्में जो फिल्मों के पर्दों के पीछे की कहानी आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। और जहां तक बात है फरमाइशों की, तो ये 7 से 8 का घंटा उन्हीं लोगों के लिए आज खास तौर पे डेडिकेट किया गया है जिन्होंने आज से पहले कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट जो है एफएम रेनबो पे साझा नहीं की है। वो नंबर मैं आपके साथ बहुत जल्द शोर करने वाला हूँ और ये शेर और शोर के बीच में मैं कह सकता हूँ खूबसूरत गीत होने वाले हैं, क्योंकि एफएम रेनबो पर होता है लेस पकाना मोर बजाना। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना।

आसमान वाले जमीन पर उतर कर देख, लेकिन भाई साहब जमीन पर उतर जाओगे तो आप देखोगे हमारे भारतीय माँ बाप वाह वाह वाह। कहते हैं कि भाई साहब अजनबियों से बातें मत करो लेकिन उनसे शादी कर लो, है कि नहीं है? क्या कहें। वेल आज के टाइम में भाई साहब जगह जगह ऐसे कोर्स लगे होते हैं, आप कभी कभार उनसे रिलेट कर लेते हो, आप भी रिलेट कर पाते होंगे। आपने देखा होगा कि जरा सा धक्का लगते सारी लड़कियां भैया बोल देती हैं, ओ भैया थोड़ा संभल के। हाँ भाई साहब यार लड़के की जान ले लो, मजा ले कि जो दीदी बोल दे, है कि नहीं है? 6:54 हो चुके हैं और एक और खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है कनिष्क सेठ की आवाज में, कविता सेठ की आवाज में, रंगी सारी जुग जुग जियो से। और 7 आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद एक और खूबसूरत से कार्यक्रम का आगाज होगा जिसका नाम है हम तुम, और उसमें आज आप सुनने वाले हैं बॉलीवुड ट्रिवियाज यानी कि भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा के वो पुराने किस्से जो पर्दों के पीछे होते थे। वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हो, वो वाले जो पर्दे के पीछे, जहां पर भाई साहब हीरो बदल जाते थे, हीरोइनें बदल जाती थी, कहानी का पात्र बदल जाता था और भाई साहब फिल्मों से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कहानियां जो आपको 3 की फिल्म में नजर नहीं आती थी लेकिन पर्दे के पीछे बबाल ही मचा देती थी। जी हाँ, वो क्या कहानियां थी, वो क्या किस्से थे जो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, बताऊंगा आपको बहुत जल्द। ठीक ये आने वाले शो में, इसका नाम है हम तुम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
2: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला।
1: इमारतीचे आराखडे अंतिम टप्प्यात असतानाच संग्रहालय आणि बागेचे मुख्य आरेखनकार विलियम ट्रेसी यांचं निधन झालं। त्यांचा अकाली मृत्यू संग्रहालय समितीसाठी धक्कादायक होता, पण दुःख करत बसायला वेळ नव्हता।
3: श्रोतेहो, भाऊदाजी लाड वस्तू संग्रहालयाची गोष्ट अवश्य ऐका, नंदिता पाटकर आणि मंदार परांजपे यांच्याकडून। लेखक आहेत नितीन साळुंखे। ही गोष्ट आपण ऐकू शकाल 22 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान रोज सकाळी 8:15 FM रेनबोवर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर दोन्ही वेळेला। जरूर ऐका अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम दररोज।
4: वेलकम बैक दोस्तों, 7:14 और 19 सेकंड हो गए हैं। टिक टिक करती हुई घड़ी बता रही है कि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम भी नहीं रुकते और आपके समक्ष लेकर आ गए हैं खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसका नाम है हम तुम। और आज का ये खास शो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जिन्होंने आज से पहले कभी भी कोई रिक्वेस्ट FM रेनबो पर साझा नहीं किए, यानी कि ये शो में आप अपने मनपसंद के गाने अपने लिए भी सुन सकते हैं और अगर किसी को सुनाना चाहते हैं उनकी रिक्वेस्ट भी यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। या फिर अगर आपने कुछ खूबसूरत कविता लिखी हो, कोई कोट हो, आपके दिल की बात हो और आप चाहते हो कि FM रेनबो के माध्यम से उन तक पहुँचे और आपने आज से पहले कभी भी FM रेनबो से कनेक्ट नहीं किया है, तो आज कनेक्ट करिए, यही मौका है आपके लिए। 8657661071, यानी कि 8657661071 ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप में जाकर आपको लिखना है फर्स्ट टाइम FM रेनबो और उसके बाद में आप जिस भी गाने की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी गाना अपने किसी चाहने वाले को सुनाना चाहते हैं या आपके लिए कोई खूबसूरत पंक्तियां, वो उसमें जोड़ दीजिए और बस भेज दीजिए। और अगर आप हमें ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से शो को सुन रहे हैं तो शायद आपका ये अंदाज शो में चार चांद लगा देगा। फिलहाल सुनते हैं इस घंटे के सबसे पहले ट्रैक को जो होने वाला है खलनायक की फिल्म से। खलनायक का टाइटल ट्रैक सविता, या यूं कहूं माफी चाहूंगा, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में और साथ में है विनोद राठौड़।

वेलकम बैक दोस्तों, साथ बजकर ठीक 23 मिनट हो चुके हैं और इस खूबसूरत सी फिल्म का ट्रिविया भी खूबसूरत ही है, या यूं कहूं कि बिल्कुल खलनायक जैसा है रियल लाइफ में भी, क्योंकि 1993 में जब संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, उसी वक्त पर एक फिल्म रिलीज़ होने वाली थी और ये फिल्म उस वक्त पर अटक जाती, यानी कि रिलीज़ नहीं हो सकती थी, पर रिलीज़ कर दी गई। सुभाष घई साहब की ये दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में कहा जाता है कि पहले एक फिल्म थी देवा के नाम से जो बनने वाली थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जो थे वो लीड करने वाले थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो फिल्म शेल्व हो गई। और बाद में कहा जाता है कि देवा नाम की इसी फिल्म को खलनायक के रूप में बनाया गया और एक नई स्टार कास्ट ने इसमें काम किया, नए टाइटल के साथ में कुछ स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए और लेजेंडरी अमिताभ बच्चन साहब का जो रोल था वो बाद में संजय दत्त ने किया। कहा जाता है कि इस फिल्म ने बहुत ज़बरदस्त जो है नंबर बटोरे थे और कनाडा और अमेरिका में ज़बरदस्त बिजनेस किया था, और यहाँ तक कि हॉलीवुड की जो मूवीज़ वहाँ पर रिलीज़ हुई थी उनसे भी ज़्यादा इस फिल्म ने कारोबार किया था। अगला जो ट्रैक आपके समक्ष आने वाला है वो है बाजीगर ओ बाजीगर, अलका याग्निक की आवाज़ में। इसकी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास से विरार से, और इसकी रिक्वेस्ट की है उदित ने, और वो कह रहे हैं कि 90s के गाने के वो बहुत ही शौकीन हैं। ये गाना वो अपने जुड़वा भाई जो हैं मुकुल, उनके लिए चाहते हैं प्ले किया जाए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: ठीक शाम के 7:30 हुए हैं और आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण टिकिया। जी हां, एशियन गेम्स की हम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहे। आज की अगर 1500 मीटर महिलाओं की रेस की बात करें तो पारुल चौधरी पदक से सिर्फ एक स्थान चूक गई है। उन्होंने 4:09.46 का समय निकालते हुए, हालांकि उनका बेस्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन चौथा स्थान हासिल किया। वहीं भारत की ही पूजा ओला 4:16.78 के समय के साथ छठे स्थान पर रही।

0: And in the latest update from the athletic stadium, remember we told you it was drenched, it was pouring down, it was slippery, and that did affect one of our athletes, Praveen Chitravel, who was in the men's triple jump, injured himself in his first attempt and did not get himself on the scoreboard. However, Krishna Unnikrishnan got himself on the scoreboard. However, he ended up sixth. Meanwhile, in the men's 400 meter, Vishal TK finished at the fifth spot with a time of 45.48 seconds.
1: जी, अगर बात करें आज के दिन भर की हलचल की बात करें तो बड़ा उठक पठक देखने को मिली जापान में, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सुबह शानदार शुरुआत होती, शाम आते आते भी भारत की झोली में पदक आ गया। अगर बात करें कबड्डी की तो कबड्डी में दोनों पदक भारत की झोली में आए। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। ये बताएं तो 37-34 से भारतीय महिला टीम ने इस मुकाबले को जीता, फाइनल खिताबी मुकाबले को जीता। हालांकि बेहद टाइट मुकाबला था, सख्त मुकाबला था, लेकिन भारतीय महिलाओं ने खिताबी मुकाबला जीतकर चौथी बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। वहीं पुरुष कबड्डी टीम की बात करें तो ईरान से ही मुकाबला था, यहां भी 40-34 से भारतीय टीम ने ईरान को शिकस्त देते हुए रिकॉर्ड 9वीं बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।
0: Right, and then we also got a couple of silver medals early in the morning. One of them came from the shooting range, where the trio of Ashi Choksi, Vidarsha Vinod and Tilotma Sen brought us that silver medal in the women's team event of the 50 meter rifle three position.
1: जी, अगर बात करें सुबह की जब शुरुआत होती है, सूरज निकलता उसी समय भारत को एक बड़ी जीत मिली। भारत के एक खिलाड़ी ने इतिहास रचा, बताना चाहूंगा अमन बरवाल के बारे में। 44 साल का इंतजार था मैराथन में पदक का, उन्होंने वो सपना वो ख्वाब पूरा किया। भारत के सावन बरवाल ने मेंस मैराथन में 2 घंटा 11 मिनट 37 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता। यह एक नेशनल रिकॉर्ड भी उनका है, अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी उनका रहा है।
0: टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स कमिंग ट्रू, जोशना चिनप्पा प्लेइंग हर 7th एशियन गेम्स वॉज एबल टू गेट हरसेल्फ ऑन द पोडियम। शी अलोंग विद सेंथिल कुमार इन squash mixed doubles registered a bronze medal, and 2 more medals have been confirmed in squash. Anahat Singh and Abhay Singh have made it to the final respectively in the women's singles and the men's singles. They will be playing their final matches tomorrow.
1: Sham dhalte dhalte darpan batana chahunga to Bharat ki Prachi Chaudhary ne 400 मीटर दौड़ में 53.21 सेकंड का समय निकालकर भारत के जो पदक की संख्या थी उसमें इजाफा किया।
0: Right, and how can we forget Tajinder Pal Singh Toor, who won the silver medal in men's shot put and thereby completed a hat-trick of Asian Games medals. He won 2 gold medals back-to-back in 2018 and 2023 and now has won a silver medal today. However, the day is not done. There is one more match that the Indian fans are eagerly awaiting. It is the third round of the women's singles in badminton, where PV Sindhu is supposed to take on Japan's Miyazaki Tomaka, and that match is going to begin in a while from now. So we are still awaiting it. However, let's have a look at the medals tally. India are currently at number 10. Yes, those 2 kabaddi gold medals have helped us climb a couple of spots on the medals tally. India have 4 gold medals in total, 12 silver and 14 bronze medals, with a total of 30 medals at number 10. People's Republic of China at the apex spot, number 1, Japan number 2, and Republic of Korea, that's South Korea, at number 3.
1: जी बिल्कुल, अब जब कल शुरुआत होगी तो भारतीय एथलीट जब कल शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल कई मुकाबले होने वाले हैं, शूटिंग में भारत को उम्मीद है, कई ऐसे खेल हैं जहां पर भारत की उम्मीद है, लेकिन अभी पीवी सिंधु का मुकाबला आना बाकी, देखना वहां पर क्या कुछ होता, बहुत कुछ आने वाला है। आज की अंतिम अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और दर्पण टिकिया को ये कहते हुए अनुमति दीजिए कि आज रात 10 बजे सुनना न भूलिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जो विशेष रिपोर्ट है एशियन गेम्स पर, जरूर सुनिएगा। साथ साथ कल सुबह 10 बजे माफ कीजिएगा सुबह 9:30 पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
2: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला।
1: इमारतीचे आराखडे अंतिम टप्प्यात असतानाच संग्रहालय आणि बागेचे मुख्य आरेखनकार विलियम ट्रेसी यांचं निधन झालं। त्यांचा अकाली मृत्यू संग्रहालय समितीसाठी धक्कादायक होता, पण दुःख करत बसायला वेळ नव्हता।
3: श्रोतेहो, भाऊदाजी लाड वस्तू संग्रहालयाची गोष्ट अवश्य ऐका, नंदिता पाटकर आणि मंदार परांजपे यांच्याकडून। लेखक आहेत नितीन साळुंखे। ही गोष्ट आपण ऐकू शकाल 22 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान रोज सकाळी 8:15 FM रेनबोवर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर दोन्ही वेळेला। जरूर ऐका अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम दररोज।

सपनों में रोज आए, अब जिंदगी में आना भाई, तब जिंदगी में तब आएंगे ना, शादी होगी नहीं तो भाई साहब आपको पता ही है कि जिंदगी का क्या हाल है। नवंबर और दिसंबर का महीना होता है शादियों का महीना, और तब अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो शायद घर वाले आपका नाता जोड़ के शादी फिक्स करवा कर आपका ब्याह करवा देते हैं। और कुछ लोग बड़े अच्छे और मैं कहूँगा चमत्कारी होते हैं, या यूं कहूँ कि इस तरह का जो है माल पानी जीवन के अंदर करवा लेते हैं कि अपने माता पिता को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई हमारी लव मैरिज जो है ना हमारे हिसाब से करवा दो, हमारी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करवा दो, और उनकी शादी नवंबर दिसंबर में हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, आपको उससे क्या फायदा? आपको फायदा यह है कि बस बैकग्राउंड मिल जाए, अच्छा सा एक अच्छी सेल्फी आ जाए, है ना मन में ये वाली बात। और जैसी प्लेट आती है तो रसगुल्ले की रसगुल्ले सफाचट होने से पहले एक स्टोरी पर आ जाए, बात बन जाएगी, है कि नहीं है। अब शादियों के जो मकसद हैं वो भी वक्त के साथ हैं बदल गए हैं। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने का जो माजरा है वो माता पिता के सुपुर्द रहता है, और बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम के लिए तैयार रहते हैं स्टोरी कहां पर मिल जाए। फिलहाल इसके साथ साथ आज की तारीख में व्हाट्सएप का जो तरीका है वो भी बदलता जा रहा है। पहले होता था सिर्फ स्टोरी डाल दी, कहानी खत्म हो गई, स्टेटस को लाइक कर दिया, कहानी खत्म हो गई। पर भाई साहब आज की तारीख में आपकी गुड मॉर्निंग और गुड बाय वहीं से हो रही है कि नहीं हो रही है? वेल, मैंने आज पूरे दिन इसी बारे में आपसे बात करी है कि अपने जीवन में आप किस तरह से वर्क और लाइफ का बैलेंस कर सकते हो। मैं तो बैलेंस ऐसे कर रहा हूं कि अब हिंदी के शो को मैं विराम दे रहा हूं और अंग्रेजी के शो आपके समक्ष आने जा रहा है, जो फली लेकर आ रहे हैं 8 बजे के बाद से। स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं कहाँ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्या करें, जिंदगी में इंसान गलती ना करे तो इंसान कैसे रहेगा? गलत और सही से बन के तो

जानता इंसान, और कभी कभी जबान जो है वो भी लड़खड़ा जाती है। वेल, मैं अपनी जबान को वापस से लड़खड़ाने से पहले रोक लूँ, यहीं थाम लूँ, यही मैं चाहता हूँ। 7:51 हो गए हैं, अब आपके सुपुर्द 2 मीठे से गाने आ रहे हैं, और फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे विदा। कल मिलूँगा 8 से 11 के दरमियाँ। टिल देन रखिए अपना ख्याल। 4 दिन बचे आपकी सैलरी आने में। अगर आप तनख्वाह पा रहे हो तो गांधी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत जल्द देखोगे, और अगर नहीं देख पा रहे हो तो चिंता मत करो, मेरी दुआ है कि आपके जेब में बहुत जल्दी गांधी जी आए। पर गांधी जयंती तो आएगी आएगी, गांधी जी आए या ना आए, है या नहीं है। फिलहाल बस इस तरह के गाने आप सुनते रहोगे, लेकिन इन गानों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड का ट्रिविया यहीं पर आपसे अब विदा लेगा, और अनु मलिक की आवाज़ में ये काली काली आँखें आप सुनो, और बिग बॉस में जो मिमिक्री आप देख रहे हो आजकल अनु मलिक की कर रहा है काजी समझ गया ना उसे क्या करना है। बिग बॉस देखते हो तो भैया ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ इसी तरह से जीवन के रियलिटी में कुछ मज़ेदार चलता रहना चाहिए। मैं मज़ेदार चीज़ों को अब यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ, किसके फली के, और आपसे लेता हूँ विदा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वे

मंच पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: All right, that's a bit of Brown Ferry over there. You know, this used to be Princess Dinah's favorite song. And when they made a tribute concert for Princess Dinah, her sons requested Brian Ferry to come on stage and perform this and Avalon and a bunch of other songs as well. Brian Ferry over there with Slave to Love. It's the Legend's 81st birthday, and the band Roxy Music, which he fronts, is number 10 on the 100 greatest rock pop groups of all time. We'll be counting them all down from 9:15 onwards. Stay tuned right now for the news coming up in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. You're listening to the number one station in Amchi, Mumbai, and that's of course Akashwani's Rainbow Channel on FM 107.1. Stick around for the news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए

0: एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी

0: को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
2: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
7: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक

0: 225 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 63,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Tur wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 50 years ago, Bono, The Edge, Adam Clayton, Lally Mullen Jr. formed a little group called U2 this very evening. Celebrating 50 years of the band U2, they're back at number one in 17 countries. Stick around at 10:20. We'll be playing you the brand new U2 song. They've just announced their first album in almost 10 years. Right now, of course, we've got the fantastic update of the 20th edition of the Asian Games that's happening in Japan, and it's coming to you right here on this radio station. So stay tuned for that. We're giving you every single day the updates as it happens. And of course, we're so proud of Team India. We're doing so fantastic at the Games. Jai Hind, and God bless all our great athletes out there. Stick around for the update. You're listening to Akashwani FM Rainbow.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya. कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म, सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशी चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, ज्योश्ना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैच पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
2: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India

0: defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
1: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवे स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
1: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
0: इट वॉज अ 3 मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds. बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds. लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds. While Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
1: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर, एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं।

0: कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
1: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा। हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वैनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दे कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
0: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
0: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
0: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
1: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
0: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
3: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18-year-old अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third. But the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in

0: both singles finals. He beat Pakistan's Muhammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a sixth Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा? बता रहे हैं शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के अनुषा के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुषा को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुषा भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुषा की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's sabre team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार तमिला रासन, यहास पलाक्षा शाह, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरे रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, प्रवीण 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

수놓아진 별. 내 우주의 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कभी हकीकत कभी ख्वाब लगते हो, आंखें खुली हो या बंद, लाजवाब लगते हो। पढ़ लूं तुम्हें शुरू से अंत तक, मुझे तो तुम बंद किताब लगते हो। तुझे सोचूं तो लफ्ज खुद ब खुद शायरी बन जाती है। जो तुझे देख लूं, मेरे दर्द भी सुकून के बहाने बन जाते हैं। अंशी शर्मा हसनपुर मेरठ से, और बहुत ही बढ़िया दिल के जज्बात भेजे हैं आपने। जी बिल्कुल, आपका जो अंदाज है, वेलकम टू द शो विद फ्लावर्स, निराला है जी, बहुत बढ़िया। और बने रहिएगा दोस्त, और भी नज़्म आ रहे हैं हमारे रास्ते, हमारे इस सफर में। हे विक्स, कैसे हो रिया दिल्ली से? मैं अच्छा हूँ दोस्त, और उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी। और भी कुछ अपने दिल के जज्बात हैं तो इस महफिल में अपने दोस्त के साथ साझा कीजिए। दिल यकीन मानिए दुखी है, अगर कहीं हम नहीं चाहते कहीं ना कहीं हल्का हो जाएगा। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और खुशी हो बढ़ जाती है। बाकी आप समझदार हैं। हेलो सर, मैं परवीन फ्रॉम अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद दोस्त आपने जो लिखा है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारी महफिल में आए, हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई दिल की बात हो, जज्बात हो तो जरूर हमसे साझा करिए। एम राजकुमार त्रिची से, तमिलनाडु से सुन रहे हैं हमें इस वक्त, लवली शो। नमस्कार जी, नमस्कार सरकार, दिल के जज्बात भी भेजिए हमें। हम भी एफएम रेनबो के हम सफर हैं। आदरणीय नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्नेह भरा स्वागत है। बढ़िया गजल से कार्यक्रम की आगाज पसंद करते हैं, हम सफर बनके हम। जी बिल्कुल, जब ये सफर शुरू हुआ तो मैंने कहा क्यों नहीं आज इस गजल से शुरुआत की जाए। और एक दोस्त है हमारे, उन्होंने नाम लिखा नहीं ठीक से, तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से, तमाम दोस्तों से, कि जो हम तक अपने दिल के जज्बात भेजते हैं तमाम दोस्त, तो अपना नाम ज़रूर लिखें, और जिस जगह से आप जुड़े हैं हमारे साथ तो उस जगह का नाम भी लिखेंगे तो और भी, कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सरकार। और कहते हैं तुम्हारी एक मुस्कान मेरे दिन को खास बना देती है, और तुम्हारी एक याद मेरे दिल को वो सुकून देती है जिसे हम न जाने कहां कहां तलाशते हैं। तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने। तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तुझे ही अपना सब कुछ माना है मैंने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आय हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आपको अपने, लेकिन अधूरा सा ये मैसेज लगता है। कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आपने लिखा है बहुत ही गहरी बात लिखी है सरकार। सादर नमस्कार सरकार आपको भी, और हम श्रोता मित्रों FM रेनबो दिल्ली से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंबई दादर से राजेंद्र परमार जी जुड़े हमारे साथ और हमारी महफिल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो विक्स, मुझे आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी वॉइस बहुत स्वीट लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आया करो नाइट शोज करने प्लीज़। नेक्स्ट शो कब करोगे बताना ज़रूर। रिया दिल्ली से, रिया मेरे दोस्त, अभी बता नहीं पाऊँगा ये, लेकिन जुड़ेंगे ज़रूर आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, तो बने ज़रूर रहिएगा। एक खतरा उम्मीदें बादल छाया भी नहीं होता, कोई यादें अक्स आहटों में आया भी नहीं होता, और है ना जाने कितने पागल, ये पागल मेरी तलाश, जो तुझे ढूंढती वहां भी जहां तेरा साया भी नहीं होता, तेरा साया भी नहीं होता। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से अपने निराले और प्यारे अंदाज के साथ। दिल हमेशा चाहता है कि जिसे हम चाहते हैं हमारे पास रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है, तो हम शिकायत भी करते हैं उनसे ना मिलने की, इन दूरियों की। फिर भी मोहब्बत की तासीर, मोहब्बत वही बनी रहती है।

तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा एफएम रेनबो महके। ये सरकार समझ नहीं आया कि ये दिल की बात आपकी मेरे लिए है या किसी और के लिए। चलिए, हमारे लिए तो प्यार आपका सर आंखों पर, और किसी और के लिए भी है तो उम्मीद करूंगा कि वो इस वक्त आपके दिल के जज्बात सुन रहे हो। लोग भी होते हैं अजीब, दूर हो तो चाहते हैं करीब, प्यार मिले तो खुश नसीब वरना अपना अपना नसीब। मीरा सिंह सिलचर आसाम से। सीधे साधे शब्दों में कितनी गहरी बात आपने कही है मीरा जी, और बहुत ही प्यारी बात कही है। दूरियां ही नजदीक लाती हैं, दूरियां ही एक दूजे की याद दिलाती हैं। दूर होकर भी कोई करीब है कितना, दूरियां ही इस बात का एहसास दिलाती हैं।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

छोटे से अंतराल के बाद सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। आपके लिए पेश किया है, आप बेहद खुशनुमा गजल पेश करते हैं राजेंद्र परमार जी मुंबई दादर से। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार और इस प्यार के लिए। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जुड़े हैं हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम सरकार। कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति और सदाबहार गजल, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। दिल से बड़े वाली बधाई आपको भी सरकार, और आपकी रात्रि जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। हमारा भी यही दिल की बात रहेगी हमेशा, और दुआ करेंगे ऊपर वाले से आप हमेशा सदैव खुश रहें। सौरभ तिवारी प्रगति नगर हरदोई यूपी से लिखते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो तुम, मेरी हर खुशी, मेरी हर दुआ हो तुम, साथ तुम्हारा यूं ही बना रहे उम्र भर, क्योंकि मेरी दुनिया में सबसे खास हो तुम। ये चंद लाइनें मेरी पत्नी के नाम। और उम्मीद करूंगा सौरभ जी, आपकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो इस वक्त आपके लिए बातें दिल की सुन रही हो। मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से लिखते हैं, आज काफी दिनों के बाद वाइफ साथ में सुन रही हैं। आगे की लाइन लिखना था, तुझसे मिलकर ही मुकम्मल होती है जिंदगी मेरी, वरना तो तेरे बाद तो हर लम्हा बस अधूरा सा लगता है। देखा सरकार, हमने पकड़ लिया ना आपके दिल के जज्बात। कहा था ना कुछ अधूरा सा लगता है तो लेकिन अच्छा लगा आपने इसको पूरा कर दिया। जुबां पे भले हजारों नाम, दिल में जगह बनाई है सिर्फ तुम्हारे नाम। प्रेम पाने की नेम नहीं, यादों में मीठी सी एहसास। मीरा सिंह सिलचर असम से, क्या बात है मीरा जी, बहुत ही सुहानी और बहुत ही प्यारी कह सकता हूं लाइन लिख रहे हैं। और बहुत सीधे साधे शब्दों में मैंने पहले भी कहा था, आप अपने दिल के जज्बात जिस तरह से भेज रहे हैं, हमसे साझा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।

sir. Love you. Take care of your health. Thankful. Dumpa Paul, Railway Colony, New Delhi. Say, I hope अभी आपके जो जज्बात हैं वो पहुंच गए होंगे उन तक. गाने की प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत है. शुक्रिया दोस्त, आपने अपना नाम नहीं लिखा. ओ आप अच्छा ठीक है, आप हमसे देर से जुड़े हैं, नाम पूछ रहे हैं. बिल्कुल सरकार, मैं हूं आपका अपना विक्स, आपका खास, आपका अपना विकास.

और दोस्तों वक्त तकरीबन हो गया है कि मुझे यहाँ से विदा लेना पड़ेगा इस प्रोग्राम से, और यही कहना चाहूँगा आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है 12:12। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:00 आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया जाएगा। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज एक दिन के केरलम दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण 4 धाम यात्रा आज तक के लिए रोक दी गई है। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक, 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तहे दिल से। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। यूं ही जुड़े रहिए हमारे अगले प्रोग्राम जीरो आवर शो में और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले और अभी का समय जो है 1:10, तो अभी आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाश

आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वैश्विक समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया जाएगा। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के केरलम दौरे पर रहेंगे। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण 4 धाम यात्रा आज तक के लिए स्थगित। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आज तेज बारिश का अनुमान। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा पर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण तथा तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ और अब समय हमारे अगले प्रोग्राम का यानी कि सुहानी रात का। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है 2:00 और ठीक 8 सेकंड। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वैश्विक समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के केरलम दौरे पर रहेंगे। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा आज तक के लिए स्थगित। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आज तेज बारिश का अनुमान। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा पर्व की तैयारी के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण और तजेंद्र पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ और अब समय है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना पने का। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पार्टी शुरू हो रही है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वैश्विक समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया जाएगा। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के केरलम दौरे पर रहेंगे। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा आज तक के लिए स्थगित। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आज तेज बारिश का अनुमान। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा पर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिड नाइट मेलोडीज का, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू।

0: एक्चुअली यू नो, मैं प्लेन में पहली बार सफर कर रही हूँ ना, बस इसलिए थोड़ा सा।
1: तो तुम्हें क्या लगता है, ये उड़ते ही क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा हुआ ना मैडम, तो यकीन मानो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
0: ओह माय गॉड।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम रेनबो पर इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के केरलम दौरे पर रहेंगे। समुद्र में ऊंची लहर उठने की आशंका के कारण आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा आज तक के लिए स्थगित। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा पर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समिति गठित किए। और खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगलहारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।